0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் அதனைத் தொடர்ந்து ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் ஒளிபரப்பாகும். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஃபர்ஹத் நாஸ். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहलिंग कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया।

0: மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள். நாடு முழுவதும் இன்று நடைபெறும் வேலைவாய்ப்பு திருவிழாவில் பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி காணொலி வாயிலாக பங்கேற்று உரையாற்றுகிறார். ஊழலற்ற ஆட்சி அமைய வேண்டும் என்ற மக்களின் விருப்பத்தை தவேக அரசு நிறைவேற்றும் என்று மாநில வருவாய்த்துறை அமைச்சர் திரு கே ஏ செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார். கோவில்களில் பக்தர்களுக்கு அனைத்து அடிப்படை வசதிகளும் செய்து தரப்படும் என்று இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் திரு ரமேஷ் கூறியுள்ளார். சென்னை துறைமுகம் மதுரவாயல் ஈரடுக்கு மேம்பால பணிகள் அடுத்த ஆண்டு நிறைவடையும் என்று சென்னை துறைமுக ஆணையத் தலைவர் திரு எஸ் விஸ்வநாதன் தெரிவித்துள்ளார். ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டியில் ஹைதராபாத் அணி 55 ரன் வித்தியாசத்தில் பெங்களூரு அணியை வென்றது. இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகிறது.
1: இயம் ஆகாஷவாணி சம்பிரதி வார்த்தாக ஸ்ரூயந்தாம் பிரவாச்சக புனித திரிபாடி. अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्येषश्च आतंकवादं निवारणाय बहुपक्षीय प्रयासानां सुदृढीकरणाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघस्य संरचनांतर्गतं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादस्य विषये समग्र सम्मेलनं शीघ्रमेव अंतमीकृत्य स्वीकर्तुं आहूतवन्तौ। ह्यः नवदिल्ल्याम् उभयोः नेत्रोः मध्ये वार्तायाः अनन्तरं प्रदत्ते संयुक्त वक्तव्ये उभौ पक्षौ संयुक्तराष्ट्रसङ्घे तथा यूरोपीयसङ्घे च निर्दिष्टानाम् आतङ्कवादिनाम् आतङ्किसङ्घटनानां च विरुद्धम् अपि च संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सुरक्षापरिषत् प्रतिबन्धसमित्याः अन्तर्गतं सूचीबद्धानां 67,200+ यावत् आतङ्किसङ्घटनानां विरुद्धं प्रबलं समन्वितं च कार्याचरणाय आग्रहं कृतवन्तौ।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम् अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्यां विशेषावधानेन सह रक्षा उद्योगयोः मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढीकरणेऽपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्येतयोः मध्ये संधिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अद्य 21वें रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणां वितरणं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति आभासीय माध्यमेन करिष्यति। अमेरिकादेशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अद्य भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां कोलकातानगरं आगमिष्यति। इदं तस्य प्रथमं भारत पर्यटनं भविष्यति। कोलकातानगरे प्रवासावधौ श्री रूबियो वर्येण मदर टेरेसा वर्यायाः समाधिस्थले श्रद्धाञ्जलिः अर्पणस्य अपेक्षा अस्ति। सः विक्टोरिया स्मारकमपि द्रष्टुं शक्नोति। पश्चात् अमेरिकादेशस्य विदेश सचिवः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मेलनं विधास्यति। श्वः श्री रूबियो राष्ट्रीय राजधान्यां विदेश मंत्रिणा एस जयशंकरेण सह वार्तालापं करिष्यति। सः अमेरिका देशस्य दूतावासस्य स्वातंत्र्य दिवसोपलक्षे आयोजिते कार्यक्रमेपि भागं ग्रहीष्यति। सोमवासरे श्री रूबियो वर्यः आगरा जयपुर नगरयोः भ्रमणं करिष्यति। तत्पश्चात् मंगलवासरे भारते आयोजिते क्वाड विदेश मंत्रिणां सभायां भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां प्रत्यागमिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्वीय मध्य प्रदेशे, पूर्वीय उत्तर प्रदेशे, विदर्भे च तीव्रतर उष्ण तरंगस्य स्थित्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारितास्ति। अद्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्ण तरंगस्य स्थित्यां आईएमडी विभागेन नारंगवर्णीया संचेतना प्रदत्तास्ति। तटीये आंध्र

0: सुप्रभात, नमस्कार। कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज, और मेरे साथ हैं आज नीना रकल। आज के इस अंक में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका है आपसे सरोकार। इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करेंगे और याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को। आज 23 मई 2026 है और समय हुआ है 7:30:46। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार नीना।
1: Good morning, Farhat. Dear listeners, the sun is working hard today, but your work towards your goal is even harder and purpose-driven. Stay hydrated, keep that beautiful smile on your face, and let's begin this gorgeous Saturday together with good energy and maybe an extra ice cube in your lemonade. On that note, Farhat, we welcome our listeners to a brand new morning into Akashvani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashvani network. We bring to you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we usher in the morning vibes to give the latest in national and international news, metro city updates, and as well as some historical information related to this day, that is 23rd of May 2026. Let's begin with the news headlines, Farhat.
0: जी नीना, सबसे पहले हम एक पॉजिटिव खबर से शुरुआत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव चयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: The Reserve Bank of India, RBI, has approved a transfer of record 2.86 lakh crore rupees as surplus to the central government for the financial year 2025-26, marking one of the highest dividend payouts by the central bank. The decision was taken during the 623rd meeting of the Central Board of Directors of the RBI, chaired by Governor Sanjay Malhotra in Mumbai yesterday. The RBI, in its release, said its gross income increased by 26.42% during financial year 2025-26 compared to the previous year, while expenditure before risk provisions rose 27.60%.
0: और नीना, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज से अपनी 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। वह सुबह कोलकाता पहुंचेंगे। श्री रूबियो का नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का कार्यक्रम है। कोलकाता में वह मदर टेरेसा के कब्रिस्तान में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा श्री रूबियो विक्टोरिया मेमोरियल भी जाएंगे। श्री रूबियो कल विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे।
1: The India Meteorological Department, IMD, has issued red

0: बहुत ही शबाब पर है, तो अगर मौसम में बदलाव देखने को मिलता है तो सबसे पहले राहत जो है यहाँ के लोगों को मिलेगी। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थोड़ी स्वास्थ्य से रिलेटेड खबर से। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के एक डॉक्टर ने गर्भावस्था के दौरान प्रीक्लेम्सिया का शीघ्र पता लगाने और गर्भवती महिलाओं को इसकी गंभीर स्थिति के बारे में जागरूक करने पर जोर दिया है। प्रीक्लेम्पिया गर्भावस्था के दौरान माँ और नवजात शिशु की बीमारियों के प्रमुख कारणों में से एक बताया जाता है और इसमें आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप होता है। कल विश्व प्रीक्लेम्सिया दिवस के अवसर पर आकाशवाणी से बातचीत में एम्स की प्रसूति और स्त्री रोग विभाग की प्रमुख डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने बताया कि यदि समय पर इसका पता नहीं चलता है तो इससे दौरे, स्ट्रोक, अंग विफलता और यहां तक कि मां और बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। डॉक्टर मल्होत्रा ने इस बारे में और जानकारी दी, आइए सुनते हैं।
1: प्रीक्लेम्सिया एक बीमारी है जो प्रेगनेंसी में बनती है, जिसमें माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उसका निदान है, इसको हम शुरू में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं। और ये बीमारी अवल नाल की है, जिसको अबनॉर्मल और डिफेक्टिव होने की वजह से माँ का मैनिफेस्टेशन हाई ब्लड प्रेशर के फॉर्म से है। इसको प्रीक्लेम्सिया कहते हैं जब वो प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर 5 महीने के बाद बनता है या बढ़ना शुरू करता है।
2: The Indo-Tibetan Border Police, ITBP, has successfully completed its first ever all-women international mountaineering expedition to Mount Everest, marking a historical milestone in the force's mountaineering achievements. We have a report.
3: A 14-member team of ITBP comprising 11 women climbers and 3 technical and support staff summited the world's highest peak on 21st of this month through the South Col route from Nepal side. The expedition was flagged off from the ITBP headquarters on 19th of April. As a part of its Clean Himalaya Save Glacier campaign, the team also carried out environmental awareness activities and collected non-biodegradable waste from the Everest region. Union Home Minister Amit Shah congratulated the team for unfurling the national flag atop Mount Everest. Mr. Shah said that by achieving this remarkable feat in extreme terrain and harsh climatic conditions, the team has upheld ITBP's motto of nation before self. Meanwhile, with this achievement, ITBP has now completed 232 mountaineering expeditions, including 5 successful Everest summits. The force has also scaled 6 of the world's 8,000-meter-plus peaks, including Mount Everest, Mount Kanchenjunga, Mount Makalu, Mount Lahotse, Mount Dholagiri, and Mount Manaslu. Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
0: और अब उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिला स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस बीच पंच प्यारों के नेतृत्व में तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल गोविंद घाट से घांघरिया के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्रा दल में 5,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हैं।
2: Indian Army officer Major Abhilasha Barak, serving with the United Nations peacekeeping mission in Lebanon, has been selected for the prestigious 2025 United Nations Military Gender Advocate of the Year Award. Major Barak is currently serving with the Indian Battalion as commander of the female engagement team in the United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL. She is also the first woman combat helicopter pilot of the Indian Army. With this recognition, Major Barak becomes the third Indian peacekeeper in receiving the honor.
0: और नीना, भारत के ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए डाक विभाग और फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बहुत ही अच्छी ये पहल है। संचार मंत्रालय ने बताया है कि साझेदारी का उद्देश्य डाक विभाग की बेजोड़ पहुंच और भारत के ई कॉमर्स क्षेत्र में फ्लिपकार्ट की मजबूत उपस्थिति का लाभ उठाकर देश में विश्वसनीय और ग्राहक केंद्रित पार्सल डिलीवरी समाधान प्रदान करना है। समझौते के अंतर्गत डाक विभाग पूरे भारत में फ्लिपकार्ट शिपमेंट के लिए अंतिम मील डिलीवरी सेवाएं भी प्रदान करेगा।
2: That's a brilliant initiative and partnership, Bharat. Now we move on to Punjab news. The Indian Institute of Technology, Roper, IIT Roper, the nodal institution for Punjab under the Yuva Sangam initiative, yesterday flagged off a Punjab delegation to Bihar as part of Yuva Sangam Phase 6. This is a flagship program of the Ministry of Education under the Ek Bharat, Shreshth Bharat campaign. Under this Phase 6, Punjab has been paired with Bihar. During their 10-day visit, the delegates will embark on a rich cultural and educational journey.
0: तो श्रोताओ, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम महानगरों की खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले नीना से जानते हैं चेन्नई में क्या है खास।
2: The Chennai port handled 57.9 million metric tons.

0: Solutions, MMT of cargo, recording major growth across its four C categories, including an all-time high container traffic of 1.9 MMT and handling 204,165 automobile units. According to Chennai Port Chairman S. Vishwanathan, KPL also handled 49 million metric tons of cargo, led by 25.72 MMT of coal and 18.86% rise in automobile handling to 191,825 units. The growth was supported by operational improvements, with Kamarjar Port completing capital dredging phase 6 at a cost of 440 crore rupees, enabling it to become Cape compliant with an 18 meter draft. Vessel turnaround time also improved under the One Nation, One Port initiative, reducing logistics delays and documentation issues in Exim trade. Combined operation income of the two ports crossed 2,400 crore rupees. Some more from Chennai, Bharat. State Health Minister K.G. Arun Raj has said that inspections of government hospitals to determine cleanliness rankings will be conducted quarterly. After chairing a review meeting with Joint Directors of Medical Services to assess the functioning of district headquarters, hospitals and other government medical institutions across the state, Arun Raj told reporters that the Joint Directors supervise several healthcare institutions, including government medical college hospitals, primary health centers and sub-direct hospitals.
1: और इना चेन्नई के बाद हम ना दिल्ली का रुख कर लेते हैं. दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत बूथ लेवल अधिकारी मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए 30 जून से घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे और ये सर्वेक्षण 29 जुलाई तक चलेगा. इस संबंध में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी के साथ बैठक की. सभी दलों को SIR की प्रक्रिया समझाई गई और प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ स्तरीय एजेंट नियुक्त करने का भी अनुरोध किया गया. सभी दलों ने SIR को सफल बनाने के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है. साथ ही मतदाताओं की मदद के लिए जागरूकता वीडियो भी जारी किया गया है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने सराय काले खान नमो भारत स्टेशन पर व्यवसायिक स्थानों की लाइसेंसिंग के लिए निविदा आमंत्रित की है. ये कदम यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और स्टेशन परिसरों को विकसित करने की दिशा में उठाया गया है. NCRTC ने बताया है कि निविदा के अंतर्गत स्टेशन के ग्राउंड फ्लोर पर करीब 818 वर्ग मीटर क्षेत्र में 8 स्थानों को 9 से 15 वर्षों की अवधि के लिए यथावत आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा और इसमें फूड और बेवरेज आउटलेट्स, कैफे, ये सब बनाया जाएगा. इसके अलावा इच्छुक बोली दाता ई निविदा प्रक्रिया के माध्यम से इसमें भाग ले सकते हैं. बोली जमा करने की अंतिम तिथि अगले महीने की 17 तारीख है. वहीं बुराणी के मुखमेलपुर गांव में एक ऑक्सीजन पार्क का शिलान्यास कल किया गया. लगभग 3 एकड़ में बनने वाला ये पार्क केवल हरित क्षेत्र नहीं होगा बल्कि स्थानीय नागरिकों के लिए स्वास्थ्य, मनोरंजन और सामाजिक सहभागिता का आधुनिक केंद्र भी बनेगा. पार्क के निर्माण के लिए वन विभाग द्वारा 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. वहीं अतिरिक्त 1 करोड़ रुपए उनकी विधायक निधि से प्रदान किए जाएंगे.
0: फ्रॉम दिल्ली लेट्स मूव ऑन टू बेंगलुरु. Karnataka has urged the Centre and NCRT to introduce a dedicated chapter on groundwater conservation and management in school textbooks under the revised NEP 2020 curriculum for 2027-28. Minor Irrigation, Science and Technology Minister N.S. Bose Raju said the state has written to the central government stressing the need for groundwater literacy at the school level, noting that the existing NCRT Class 10 content mainly focuses on surface water. The state has proposed the inclusion of topics such as rainwater harvesting, aquifer recharge, groundwater mapping, climate change impacts, advanced monitoring technologies and national water conservation programs. Some more from Bengaluru. Infrastructure Development Minister M.B. Patil on Friday announced that flight services from Bengaluru to Bidar and Kalaburagi will resume from June 1 and June 10 respectively. Star Air will operate flights on the Bengaluru-Bidar and Bengaluru-Kalaburagi sectors, with the government providing 28.47 crore rupees as viability gap funding. Advance booking for both routes has begun.
1: और अब महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि AI भविष्य की सबसे परिवर्तनकारी

0: शक्ति होगी और उन्होंने सभी क्षेत्रों में एआई को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में मुंबई टेक वीक 2026 की घोषणा करते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि मुंबई टेक वीक जैसी पहल एआई के क्षेत्र में युवाओं के लिए अधिक अवसर पैदा करने में मदद करेगी और महाराष्ट्र को भारत में एआई नवाचार के अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। ये कार्यक्रम 29 और 30 मई को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इंडिया एआई इन एक्शन थीम के तहत आयोजित किया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री छगन भुजबल ने कल आश्वासन दिया कि राज्य में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है और नागरिकों से ईंधन की कमी की अफवाहों पर नहीं घबराने की अपील की। मीडिया से बातचीत में श्री भुजबल ने यह भी कहा कि हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय ईंधन की कीमतों में जिस तरीके से उतार चढ़ाव आ रहा है वो काफी चिंताजनक है, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र में पेट्रोल या डीजल की कोई कमी नहीं है और कई जगहों से अत्यधिक खरीदारी की खबरें भी आई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मई में सामान्य खपत के स्तर की तुलना में लगभग 20% अधिक ईंधन की बिक्री हुई है।
1: टाइम फॉर न्यूज फ्रॉम हैदराबाद। The Nizam's Institute of Medical Sciences has achieved a major milestone in kidney transplant surgery. The hospital has completed 2,000 kidney transplants, making it the number one institution in South India for this procedure. Chief Minister A. Revanth Reddy congratulated the NIMS medical team for this outstanding achievement. The Department of Urology at NIMS has performed all these transplants with great skill and dedication. NIMS now ranks third in the country for kidney transplants.
0: और श्रोताओं, अब हम मौसम का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की, तो जैसा कि हमने शुरुआत में बताया है कि राजधानी दिल्ली में इस समय गर्म हवाएं चल रही हैं और गर्मी का प्रकोप जारी है। और तापमान की बात कर लेते हैं तो अधिकतम तापमान आज रहेगा 43 से 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई की बात की जाए तो वहां पर आज बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान शहर का रहेगा 31 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में गर्मी रहेगी और तेज धूप खिली रहेगी। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
1: Weather news from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Chennai is expected to have a generally cloudy sky with moderate rain. The minimum temperature was 29 degrees Celsius and maximum will be around 39 degrees. Bengaluru is expected to have heat wave. The minimum temperature was 28 degrees Celsius and maximum will be around 44 degrees. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The temperature will hover between minimum of 30 degree and a maximum of 42 degrees Celsius.
0: और अब आइए इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं। आज है 23 मई 2026। तो सबसे पहले आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं। आज विश्व कछुआ दिवस है।
1: Yes, Farhat, they've been cruising our oceans and walking our sands since the time of the dinosaurs. But today these ancient mariners need a helping hand and we wish our listeners a happy World Turtle Day. The World Turtle Day is observed to spread awareness about the protection and conservation of turtles and tortoises around the world. The day highlights the importance of preserving their natural habitats and protecting them from threats such as illegal wildlife trade, pollution, climate change and habitat destruction. Environmental organizations and wildlife experts also encourage people to take steps towards safeguarding these slow-moving reptiles, which play an important role in maintaining ecological balance.
0: और नीना, वैसे भी हमने बचपन में कहानी सुनी थी कछुए खरगोश की, जिसमें कछुआ हम जो है जीत जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस रेस में कछुआ हमेशा जीतता रहे ताकि जो इसकी संख्या है वो बढ़ाई जा सके।
1: We wish the turtles all the very best and our contribution also to their inhabiting this earth. Turtles and tortoises are among the oldest living creatures on earth, symbolizing patience, longevity and balance in many cultures. As several species face the threat of extinction, World Turtle Day serves as a reminder that protecting wildlife is a shared responsibility. The occasion encourages people to respect nature and contribute towards building a safer and healthier environment for future generations.
0: और अब आइए इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले बात सन 1951 की। इतिहास में 23 मई का दिन तिब्बत पर चीन के औपचारिक कब्जे के रूप में दर्ज है। चीन के इस कदम का तिब्बत और दुनिया के कई देशों में

0: जमकर विरोध हुआ था।
1: The second defenestration of Prague took place, triggering events that led to the 30 Years' War in 1618. In 1785, Benjamin Franklin announced his invention of bifocals, combining near vision and distance vision lenses into a single pair of glasses. And in 1915, Italy entered World War I by declaring war on Austria-Hungary.
0: और नीना, सन 1984 की अगर बात की जाए तो भारत की प्रसिद्ध पर्वतरोही भचेंद्री पाल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास रचा। वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उत्तराखंड के एक साधारण परिवार से आने वाली भचेंद्री पाल ने कई चुनौतियों और सीमित संसाधनों के बावजूद अपने लक्ष्य को हासिल किया। एवरेस्ट अभियान के दौरान उन्हें प्रतिकूल मौसम और कठिन परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी।
1: In 1949, the Federal Republic of Germany was officially established with the adoption of the Basic Law. And in 2016, ISRO launched the Reusable Launch Vehicle Technology Demonstrator, RLVTD, India's first indigenously built space shuttle from Sriharikota, Andhra Pradesh.
0: और सन 1995 में आज के दिन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा जावा का पहला सार्वजनिक संस्करण जावा 1.0 जारी किया गया। और सन 2008 में भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया। और इतिहास के बाद अब आइए कुछ जानी मानी शख्सियतों को हम याद कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार अन्नाराम सुदामा की, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ। सुदामा ने राजस्थानी और हिंदी में उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक, निबंध, यात्रा संस्मरण, बाल साहित्य और अन्य विधाओं में 25 पुस्तकें लिखीं। इनका साहित्य अन्नाराम सुदामा समर्क के नाम से 7 खंडों में प्रकाशित हुआ। अकादमियों और संस्थाओं की अगर बात की जाए तो इन्हें 11 पुरस्कार मिले। इनकी साहित्यिक रचनाएं विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल की गईं। इनकी सबसे प्रमुख रचना मेवे रारुख है, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
1: जूल किल्चर, professionally known as Jewel, is an American singer, songwriter, musician, producer, actress, author, and poet. She has received 4 Grammy Award nominations, and as of 2015, she has sold over 30 million albums worldwide. Jewel was raised in Homer, Alaska, where she grew up singing and yodeling as a duo with her father, a local musician. Sometimes the most powerful journeys are the ones where we pause. Jewel's Standing Still is not just a song, it's a reflection, a mirror held up to pace of our lives. As the melody unfolds, it feels like time slows down, inviting us to breathe, to listen, to feel. This isn't just music, it's a meditation, a reminder that even in stillness, the heart beats, the soul speaks, and life continues to bloom. Here is Jewel with Stand Still.

0: और श्रोताओ, आज ही के दिन जन्म हुआ भारत के उन गिने चुने गणितज्ञों में से एक, जिन्होंने गणित के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण और दूरगामी योगदान दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रहलाद चुन्नीलाल वैद्य की। वो न सिर्फ एक मशहूर गणितज्ञ थे बल्कि एक शिक्षाविद भी थे। वो चाहते थे और प्रयास करते थे कि गणित बच्चों के लिए सुगम और रुचिकर बने। वो मानते थे कि गणित सिखाना शायद कठिन है, मगर गणित सीखना कठिन नहीं है, क्योंकि गणित तो हमारी संस्कृति का एक अंग है।
1: Linda Thompson is an American songwriter, former actress and beauty pageant winner. Thompson began her acting career as a hee-haw honey on the American television variety show Hee-Haw. Thompson collaborated with composer Richard Marx on Josh Corbin's first hit record To Where You Are, with composer Steve Droff on the Celine Dion hit Miracle, with Andreas Carlson for Drowning by the Backstreet Boys, and composer David Foster on several compositions including No Explanation for the film Pretty Woman and I Have Nothing for the film The Bodyguard, for which they were nominated both for the Academy Award for Best Song. Her pen has painted emotions, her lyrics have become companions to countless listeners, and her artistry continues to inspire generations of music.

0: और अब हम याद कर रहे हैं जयपुर राजघराने की राजमाता महारानी गायत्री देवी को। ये दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थीं। इन्होंने पहली बार 12 साल की उम्र में भगेरे का शिकार किया। सन 1939 से 1970 तक गायत्री देवी जयपुर की महारानी बनी। इसके अलावा महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल का इन्होंने शिलान्यास किया जयपुर में 1943 में, और इंडिया का ये यानी भारत का ये पहला जो है महिलाओं का स्कूल था।
1: Rehman is an Indian film actor who has starred in over 150 films, primarily Malayalam, Tamil and Telugu films. From teen idol to season star, Rehman's journey through Indian cinema is nothing short of remarkable. Both Rasheem Rehman, he burst into the silver screen with Koodavidu in 1983, a debut that earned him the Kerala State Award for Best Supporting Actor. Enjoy listening to this song from his movie.

0: और श्रोताओं, अब हम याद कर रहे हैं एक लेखक होने के साथ साथ उत्कृष्ट कोटि के अनुवादक और आलोचक चंद्रबली सिंह को। गाजीपुर में जन्मे चंद्रबली सिंह ने लोक दृष्टि, हिंदी साहित्य और आलोचना का जनपक्ष नामक शीर्षक से पुस्तक का प्रकाशन किया। इनकी गिनती एक उत्कृष्ट कोटि के अनुवादक के रूप में की जाती है।
1: Today we honor and remember a woman whose music still dances through generations, Rosemary Clooney, an icon, a survivor, and a voice that will forever echo in the halls of American song. Let the golden age of music sweep you back to the 1950s, a time when one voice could light up the airwaves and stir the soul. That voice belonged to Rosemary Clooney. With Come On In My House, she burst into stardom, and soon after, her playful charm and velvet tones gave us unforgettable hits like Mambo Italiano. But Rosemary was more than a pop sensation. She was a jazz storyteller, weaving emotion into every note. Here's Mambo Italiano.

0: और श्रोताओं, आज के दिन हमें अलविदा कहा भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता राखलदास बंदोपाध्याय ने। ये भारतीय पुराविदों के उस समूह में से एक व्यक्ति थे जिसमें से अधिकांश ने 20वीं शती के प्रथम चरण में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के सहयोगी के रूप में पुरातात्विक उत्खनन, शोध और स्मारकों के संरक्षण में विशेष ख्याति प्राप्त की थी। और अब इसके साथ ही वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। अगर किसी कारणवश आप हमारे कार्यक्रम को नहीं सुन पाए हैं तो आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर।
1: Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in. Have a superb day.
0: Namaskar.

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
4: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
5: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
6: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जानचीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्यों, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग

0: आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
4: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
5: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ

0: अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8,000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट UG की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे 100% त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम न करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। NCERT की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ஆகாஷ்வாணி நேரம் 8:30 101.1 FM கோல்ட்.
1: நமஸ்கார், மை ஹூ கைலாஷ் கேர் ஓர் ஆகாஷ்வாணி கே சபி ஸ்ரோதாவோ கோ மேரா பாரம்பார் பிரணாம். ஓர் பாரத் கி சேனா கோ சமர்ப்பித் யே மேரா கீத் பாரதிய சேனா, ஜோ தீனோ சேனாவோ கோ சமர்ப்பித் ஹை, ஹர் தேஷ்வாசி கோ சமர்ப்பித் ஹை, ததா பாரத் கே ஹர் சைனிக் கோ சமர்ப்பித் ஹை, பேராமிலிட்ரி கே அர்த்த சைனிக் பலோ கே ஹர் சைனிக் கோ சமர்ப்பித் ஹை, ரக்ஷா மந்த்ராலய சே லேகர் தேஷ் கே एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: 100.1 FM கோல்ட் அலைவரிசையில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஃபர்ஹத் நாஸ். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
2: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित

0: नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की ये पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार ये वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। तमिलनाडु के तिरुप्पुर स्थित एक विशेष न्यायालय ने भारत में अवैध रूप से रह रहे 25 बांग्लादेशी मजदूरों को 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके पास अवैध दस्तावेज में ये मजदूर तिरुप्पुर जिले के पल्लडम के एक कपड़ा कंपनी में काम कर रहे थे। जांच के दौरान उनके पास बांग्लादेशी नागरिकता दर्शाने वाले पहचान पत्र भी पाए गए हैं। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और विशेष न्यायालय में सुनवाई के बाद कल ये फैसला सुनाया गया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार दिया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में भी कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतरोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रकेल। Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality. The Reserve Bank of India, RBI, has approved a transfer of record 2.86 lakh crore rupees as surplus to the central government for the financial year 2025-26, marking one of the highest dividend payouts by the central bank. The decision was taken during the 623rd meeting of the Central Board of Directors of the RBI, chaired by Governor Sanjay Malhotra in Mumbai yesterday. The RBI and

आकाशवाणी से प्रस्तुत है विश्व दर्पण। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो चार दिन की भारत यात्रा पर, प्रधानमंत्री मोदी से आज नई दिल्ली में मुलाकात। ट्रंप प्रशासन ने अस्थायी वीजा पर रह रहे और ग्रीन कार्ड लेने के इच्छुक आवेदकों को अपने देश से ही आवेदन करने का नया नियम जारी किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के प्रकोप के खतरे को राष्ट्र स्तर पर उच्चतम बताया। और भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो चार दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की यह पहली भारत यात्रा है। यह यात्रा अमेरिका और भारत के आपसी संबंधों को मजबूत

0: करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलुओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की भी संभावना है। भारत रवाना होने से पहले श्री रूबियो ने भारत को एक महान सहयोगी और साझेदार बताते हुए कहा कि भारत के साथ कई क्षेत्रों में काम करना है। ट्रंप प्रशासन ने अमरीकी ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है। प्रशासन ने अस्थायी वीजा पर रह रहे और ग्रीन कार्ड के इच्छुक आवेदकों को अपने देश से ही आवेदन करने का नया नियम जारी किया है। इसके अनुसार स्थायी निवास चाहने वाले विदेशी नागरिकों को अब आवेदन करने के लिए स्वदेश लौटना होगा। अमरीकी नागरिकता और आवेदन सेवा के अनुसार अमरीका में आवेदन केवल असाधारण परिस्थितियों में ही स्वीकृत किए जा सकेंगे। नई नीति के अंतर्गत स्थायी निवास के आवेदकों को अब विदेश में ही काउंसलर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस निर्णय से अमेरिका में अस्थायी वीजा पर कानूनी रूप से रह रहे लाखों लोगों के प्रभावित होने की संभावना है। इनमें विद्यार्थी, अमेरिकी नागरिकों के जीवन साथी और विदेशी कामगार शामिल हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री गैबार्ड ने कहा है कि उनके पति की गंभीर बीमारी का पता चलने के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया। वे 30 जून से अपने पद से हट जाएंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भेजे त्यागपत्र में सुश्री गैबार्ड ने कहा कि पिछले 1.5 साल से राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद पर कार्य करने के लिए वे बहुत आभारी हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुश्री गैबार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रशासन को उनकी कमी महसूस होगी। सुश्री गैबार्ड के बाद राष्ट्रीय खुफिया प्रधान उपनिदेशक आरुण लुकास कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। अमेरिका में केविन वॉश ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण की। उन्होंने जेरोम पावेल का स्थान लिया है। श्री पावेल 2018 से इस पद पर कार्यरत थे। इस अवसर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फेडरल रिजर्व श्री वॉश के नेतृत्व में जनता का विश्वास बहाल करेगा। उन्होंने श्री वॉश को केंद्रीय बैंक का नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य व्यक्तियों में से एक बताते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे इसके सबसे प्रभावी अध्यक्षों में से एक होंगे। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में लगभग 40,000 लोगों को निकासी के आदेश दिए गए हैं और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यह निर्णय प्लास्टिक के पुर्जे बनाने में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक रसायन के भंडारण टैंक से रिसाव के बाद लिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम करार दिया है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेसिस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इसके संक्रमण के 82 रोग सामने आए हैं और 7 मौतें दर्ज की गई हैं। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थों या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है और दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी फैल सकती है। इसका उष्मायन काल 2 से 21 दिन तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है, जो बाद में गंभीर जटिलताओं में बदल सकते हैं। समाचार कक्ष से विश्व दर्पण के लिए मैं लवली निगम।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार दिया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं। एक रिपोर्ट।
2: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में

0: भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
2: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: चीन के शांशी प्रांत में एक कोयला खदान में कार्बन मोनोक्साइड का स्तर सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाने के कारण 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 38 मजदूर अब भी खदान के अंदर फंसे हुए हैं। सरकारी मीडिया के अनुसार ये घटना चांगझे शहर के किन्युआन काउंटी में स्थित लियू शेन्यू कोयला खनन में हुई। दुर्घटना के समय खदान में 247 मजदूर थे। बचाव अभियान जारी है और अब तक 201 मजदूरों को सुरक्षित बाहर लाया गया है। स्पेसएक्स ने आज सुबह सबसे बड़े और शक्तिशाली स्टारशिप सुपर हेली रॉकेट सिस्टम का प्रक्षेपण किया। ये चंद्रमा और मंगल ग्रह के मिशनों के लिए पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य अंतरिक्षयान विकसित करने के प्रयासों में एक और मील का पत्थर है। इसमें सुपर हेवी बूस्टर और ऊपरी चरण के अंतरिक्षयान दोनों में सुधार किए गए हैं। रॉकेट ने अमरीका के टेक्सस में स्थित स्पेसएक्स के स्टारबेस संयंत्र से सफलतापूर्वक उड़ान भरी। इस मिशन में सफल हॉट स्टेजिंग पृथक्करण हुआ। इसमें बूस्टर के पूरी तरह से अलग होने से पहले ही ऊपरी चरण के रैप्टर इंजन प्रज्वलित हो गए। सुपर हेवी बूस्टर ने मैक्सिको की खाड़ी की ओर अपनी निर्धारित अवरोहण यात्रा शुरू की, लेकिन पानी तक पहुंचने से पहले ही हवा में विस्फोट हो गया। बूस्टर के नष्ट होने के बावजूद ऊपरी चरण के स्टारशिप ने अंतरिक्ष में अपनी उड़ान जारी रखी, जिससे मिशन स्टेजिंग चरण से आगे बढ़ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर, प्रधानमंत्री मोदी से आज नई दिल्ली में मुलाकात। ट्रंप प्रशासन ने अस्थायी वीजा पर रह रहे और ग्रीन कार्ड लेने के इच्छुक आवेदकों को अपने देश से ही आवेदन करने का नया नियम जारी किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के प्रकोप के खतरे को राष्ट्र स्तर पर उच्चतम बताया और भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good morning. This is Akashwani. I'm Sunil Verma with the world news. The headlines. US Secretary of State Marco Rubio begins four-day visit to India to call on Prime Minister Narendra Modi in New Delhi this afternoon. Trump administration introduces new rule requiring green card applicants on temporary visas to apply from their home countries. WHO raises risk of Ebola outbreak in Congo to very high at national level. And Indian Army officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. U.S. Secretary of State Marco Rubio arrived in Kolkata this morning on a four-day visit to India. This is his maiden visit to India, marking an important step towards strengthening bilateral ties

0: தொடர்வது ஹிந்தியில் செய்தி அறிக்கை. டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே லவ்லீன் நிகம். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव चयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
2: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे, साथ ही व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी तथा हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग बढ़ेगा। अमरीकी राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि विदेश मंत्री आज ही नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। भारत रवाना होने से पहले श्री रूबियो ने मायामी में मीडिया से बात करते हुए भारत को एक महान सहयोगी और साझेदार देश बताया। भारतीय सेना की अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार दिया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल के कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। यह रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैठक में बैंक ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी, बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality. The Reserve Bank of India, RBI, has approved a transfer of record 2.86 lakh crore rupees as surplus to the central government for the financial year 2025-26, marking one of the highest dividend payouts by the central bank. The decision was taken during the 623rd meeting of the Central Board of Directors of the RBI, chaired by Governor Sanjay Malhotra in Mumbai yesterday. The RBI in its release said its gross income increased by 26.42% during financial year 2025-26 compared to the previous year, while expenditure before risk provisions rose 27.60%. U.S. Secretary of State Marco Rubio arrived in Kolkata this morning on a 4-day visit to

நந்தன நந்தன.

அண்ணா.

காப்பாடிட்டேன்.

0: పాడి స్వయంగా నటించారు పాతాల భైరవి చిత్రం కోసం.
1: Hey!

నేటి గవరు మరి కథానాయకుడు నీవా.

அழகிய தமிழ் மகள்

0: இன்று பகல் 1:10 ஹரிச்சந்திர உபாக்கியானம் இசை பேருரை நிகழ்த்தியுள்ளவர் தஞ்சாவூர் என் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள். மாலை 5 அரங்கசியில் ஸ்ரீமதி சீதாராமன் அவர்கள் பாடியுள்ள பக்தி பாடல்கள் இடம்பெற கேட்கலாம். பி ஞானதேவ் அவர்கள் வயலின், ஹரிகுமார் சுப்பிரமணியம் அவர்கள் மிருதங்கம். நூறு.1 எஃப்எம் கோல்டு அலைவரிசையில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே லவ்லீன் நிகம். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला साझेदार बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी

में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों में मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations. The Rozgar Mela was held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including the Ministry of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. Addressing the Rozgar Mela through video conferencing, the Prime Minister said the world is eager to be a part of India's growth journey. Mr. Modi said that the country is also partnering with various countries aimed at providing opportunities, employment, and global exposure to the youth of the nation. The Prime Minister noted that India is becoming the trusted supply chain partner of the globe.
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले रोजगार मिले उनका सामर्थ्य खिल उठे साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले
0: Mr. Modi added that every Indian is working with the commitment to making India Viksit Bharat by 2047, and to achieve this, the country is investing in several sectors. The Prime Minister highlighted that new employment opportunities are being created for the youth of the country.
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है
0: Bihar Chief Minister Samrat Chowdhury has announced that 1 lakh teachers will be recruited in the state over the next 5 years.

0: is 81 rupees and 9 paise. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Punjab Kings in Lucknow this evening. The match will start at 7:30 p.m. Last night, Sunrisers Hyderabad defeated Royal Challengers Bengaluru by 55 runs in Hyderabad. The India Meteorological Department IMD has issued a red warning for heatwave to severe heatwave conditions over East Uttar Pradesh, East Madhya Pradesh and Vidarbha till tomorrow. According to the IMD, heatwave conditions are expected to persist over large parts of northwest, central and eastern India over the next 6 to 7 days. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi distributes over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments, says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Bihar government to recruit 1 lakh teachers in the state over the next 5 years. CBSE extends last date for obtaining scanned copies, photocopies of answer books for Class 12 board examinations until tomorrow. US Secretary of State Marco Rubio to call on Prime Minister Modi in New Delhi today. WHO raises public health risk of Bundibugyo strain of Ebola in Congo from high to very high. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to take on Punjab Kings in Lucknow this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे कहा भारत युवाओं को अवसर रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले रोजगार मिले उनका सामर्थ्य खिल उठे साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है
1: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया
2: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है यही स्पिरिट

0: यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत iGOT प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
1: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। CBSE ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए

0: हम सब देख रहे हैं।
1: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
1: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेन्यू कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट

0: का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: நேரம் 2:30 ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலி 100.1 FM கோல்டு.

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। श्री मोदी ने कर्मचारियों को iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी अधिक युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार के प्रयासों का मुख्य जोर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में देश की यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। वहीं कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। श्री सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है। संसदीय कार्य और सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार सुगमता के क्षेत्र में तीव्रता से प्रगति कर रहा है। केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर वर्ष कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी विद्यार्थियों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि भारत दुनिया की एकमात्र ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावट के शुरुआती 76 दिनों के दौरान खुदरा ईंधन कीमतों को लगभग अपरिवर्तित रखा है। सूत्रों के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध और होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के बीच भारत वैश्विक तेल संकट का असर स्वयं पर लेता रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। वे मंगलवार को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। और IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ में

0: मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: नमस्कार, रोजगार समाचार के साथ हाजिर हूँ मैं विनीता। आइए कुछ जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर NHSRC नई दिल्ली योजना प्रभाग ब्यूरो BOP NHA सेल के अंतर्गत पूर्णता संविदा के आधार पर कुछ पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। पदों का नाम जूनियर कंसल्टेंट NHA सेल BOP डिविजन MOH एंड FW। रिक्तियों की संख्या 2 है और आयु सीमा 55 वर्ष है। इन्हें मिलेगा 40,000 रूपए से 70,000 रूपए मासिक। जहाँ तक योग्यता और अनुभव की बात है, आवश्यक योग्यता और अनुभव के विवरण के साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR www.nhsrcindia.org या फिर www.mohfw.gov.in और www.devnetjobsindia.org पर उपलब्ध है। आवेदन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अंतिम तारीख होगी 1 जून 2026। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, इस संस्थान में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यंग प्रोफेशनल्स को नियुक्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। विस्तार में जानकारी आपको मिल जाएगी यहाँ के वेबसाइट से, यानी nsi.gov.in। निर्धारित प्रारूप में आवेदन आप भेज सकते हैं निदेशक राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर 208017। यहाँ आप भेज सकते हैं। 8 जून 2026 तक अवश्य ये आवेदन पहुँच जाने चाहिए। सशस्त्र बल अधिकरण AAFT क्षेत्रीय पीठ कोलकाता हेतु पात्र अभ्यर्थियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर 3 वर्ष की अवधि के लिए विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। पात्रता मानदंड, प्रारूप एवं आवेदन से संबंधित अन्य शर्तों आदि का विवरण आप पा सकते हैं वेबसाइट से। वेबसाइट की जानकारी आपको दे दें www.aftkolkata.nic.in। एक बार पुनः सुन ले, www.aftkolkata.nic.in और www.aftdelhi.nic.in। जमा करने की अंतिम तारीख होगी 5 जून 2026। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का प्रमुख मिनी रत्न उद्यम। इस डोमेन में विशेषज्ञता वाले 17 युवा पेशेवरों YP से संविदा आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। पद का नाम है YP सॉफ्टवेयर और वेब विकास। पदों की संख्या 2 होगी। YP डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्रबंधन, पदों की संख्या 2 होगी। YP बाजार और आर्थिक विश्लेषण, पदों की संख्या यहां पर भी 2 होगी। YP डिजिटल मार्केटिंग, e-commerce इत्यादि, एक पद यहां रिक्त है। YP कंपनी सचिव, एक स्थान यहां रिक्त है। YP सामग्री प्रबंधन, एक स्थान रिक्त है। YP मार्केट रिसर्च, डेटा व्याख्या और वित्तीय विश्लेषण, एक स्थान रिक्त है। YP सिविल इंजीनियर, एक स्थान रिक्त। YP इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एक स्थान रिक्त है। YP MSME बिजनेस आउटरीच, 2 स्थान रिक्त है। YP वेंचर इक्विटी फंड के वरिष्ठ विश्लेषक, 2 स्थान रिक्त है। YP वेंचर कैपिटल फंड के लिए IT विशेषज्ञ, एक स्थान रिक्त है। नौकरी के विस्तृत विवरण, नियम एवं शर्तें और आवेदन पत्र के लिए कृपया आप NSIC की वेबसाइट www.nsic.co.in के करियर अनुभाग पर जाएं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तारीख है वो है 8 जून 2026। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग एक वैधानिक निकाय है। दिल्ली में 2 पूर्णकालिक सदस्य तकनीकी के पदों पर चयन एवं नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। विस्तार में विज्ञापन आपको मिल जाएगी वेबसाइट के थ्रू। उसके लिए आपको वेबसाइट विजिट करना होगा moef.gov.in। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिविजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुज्तबा। सायरा, आपको भी नमस्कार।
1: नमस्कार करिश्मा, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। हज़ब दस्तूर लाए हैं आपके लिए ताज़ा तरीन खबरें एंड ऑफ कोर्स इज द नेम ऑफ द शो इज परिक्रमा, सो वील गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड सी व्हाट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आवर कॉरेस्पोंडेंट्स हैव फ्रॉम देयर। All of that in the next roughly half an hour, but first let's start with the headlines, Karishma.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के नवनियुक्त कर्मचारियों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है।
1: बिहार गवर्नमेंट टू रिक्रूट 1,00,000 टीचर्स इन द स्टेट ओवर नेक्स्ट 5 years।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की।
1: यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो मीट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी इन न्यू दिल्ली टुडे।
0: और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडी बुग्गियो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया।
1: एंड इन आईपीएल, लखनऊ सुपर जॉयंट्स टू टेक ऑन पंजाब किंग्स इन लखनऊ दिस इवनिंग। And Karishma, as always, we open our show with a very special segment, Dateline India. And of course, since a very important day today because so many people got the appointment letters. So the topic today we have, the first topic rather, is Rozgar Mela. And if there is time, we will introduce another topic which is very interesting. But first, talking about Rozgar Mela.
0: और लाखों भारतीय घरों में एक सपना बसता है, एक ऐसा सपना जिसकी शुरुआत अक्सर एक छोटी सी स्टडी टेबल पे एक मध्यम सी रोशनी वाले लैम्प के नीचे होती है और बगल वाले कमरे में माता पिता चुपचाप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। एक युवा लड़का जो अपने पिता की दुकान में हाथ बटाते हुए रेलवे की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, या फिर एक बेटी जो घर के सारे कामकाज निपटाने के बाद देर रात तक पढ़ाई करती है।
1: Well, that's true, and so we have seen so many anxious parents waiting outside exam centers, you know, ke chahe dhoop ho, loo ho, aandhi ho, jo bhi ho, wo kis ummeed se apne bachon ke liye wait karte hain, is ummeed mein that, you know, one day we will get that appointment letter or email that says that congratulations, you have been selected. Well, what changes in that moment? Is it only a job or an entire family's future? Today, across India, thousands of such dreams turned into reality.
0: बिल्कुल, और इसी के साथ श्रोताओं, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेला को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को याद दिलाया कि सरकारी नौकरियां केवल रोजगार के अवसर ही नहीं हैं, वे एक जिम्मेदारी हैं लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और व्यवस्था में नागरिकों के भरोसे को और मजबूत करने का एक अवसर है।
1: That's right, Karishma. And in his address, Prime Minister Modi said that the newly recruited youth are actually the karma yogis of our country. And now it is their duty to honor the trust that the country has placed in them through their dedication, honesty and everyday service. And isn't that what truly builds a nation, Karishma?
0: बिल्कुल सही, और प्रधानमंत्री ने एक ऐसी बात का भी जिक्र किया जो वैश्विक स्तर पे भारत की छवि को बदल रही है। आज पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा में उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को उत्सुक है। दुनिया भर के देश भारत के साथ साझेदारी कर रहे हैं जिससे भारतीय युवाओं के लिए अवसरों, रोजगार और वैश्विक अनुभव के नए दरवाजे खुल रहे हैं।
2: दुनिया भारत

0: युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है. आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है. भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है. इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे. साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले.
1: And Karishma, there was a time when many believed that opportunities existed only outside India. Hmm. But today the world itself is looking towards India as a trusted supply chain partner, an innovation hub and a rising economic force.
2: बिल्कुल सही कहा आपने. और एक नए भर्ती हुए कर्मचारी को एक कुशल लोक सेवक बनने में क्या चीज मदद करती है ये समझना भी जरूरी है. इसका जवाब सिर्फ नियुक्ति पत्रों में नहीं है बल्कि सीखने और आगे बढ़ने में छिपा हुआ है. इसलिए प्रधानमंत्री ने नियुक्त किए गए लोगों को आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का सक्रिय रूप से इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया. एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे सरकारी कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझने और नागरिकों की ज्यादा असरदार तरीके से सेवा करने में मदद करने के लिए बनाया गया है.
1: That's right, Karishma. Today, the scale of this mission is truly remarkable. Under the 19th Rozgar Mela, more than 51,000 appointment letters were distributed across 47 locations in the country. These newly selected candidates will join various departments and ministries. Behind every appointment letter lies a deeply personal story. Maybe somewhere in Rajasthan, a father proudly framed his son's first government appointment letter.
2: बिल्कुल. और इसी के साथ श्रोताओं ये भी समझिए कि किस तरीके से हो सकता है कि केरलम में अपनी पोती के चुने जाने की खबर सुनकर किसी दादी ने पड़ोसियों को मिठाई बांटी हो, या फिर हो सकता है कि पंजाब में किसी युवा रंगरूट ने चुपचाप अपने संघर्ष के वर्षों को निहारा हो और अंत में धीरे से कहा हो कि ये सब सार्थक रहा.
1: That's right. और सुन के ही कितनी खुशी हो रही है, isn't it? Well, Union Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Jitendra Singh, said that the Rozgar Mela has helped ensure transparent and time-bound recruitment. He highlighted that strict timelines and merit-based selection processes have increased confidence among the youth, and confidence matters. Because when young people trust the system, they dream bigger. They prepare harder and they believe that effort can truly change destiny.
2: डॉक्टर सिंह ने कर्मचारी चयन आयोग में किए गए बड़े सुधारों के बारे में भी बात की. परीक्षाओं के चक्र को काफी हद तक कम कर दिया गया है. परीक्षाएं अब क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जा रही हैं और शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए तेज प्रणालियां शुरू की गई हैं. ये बदलाव सुनने में भले ही प्रशासनिक सुधार लगे, लेकिन किसी ऐसे छात्र के लिए जो परीक्षा देने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करता है, या किसी एक ऐसे उम्मीदवार के लिए जो अपनी मातृभाषा में ज्यादा सहज महसूस करता है, ये बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकता है.
1: जी हाँ करिश्मा. और क्यों ना अब सुना जाए, सुनी जाए उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी. लेट्स हियर सम ऑफ द बेनिफिशरीज हु आर शेयरिंग द एक्सपीरियंसेस.
3: My name is Sakshi Verma and I'm from Raipur, Chhattisgarh, and I'm very grateful to ICF and PM Narendra Modi and Government of India that I get this opportunity through cultural quota. As a classical dancer, we get this job is very difficult and I'm very grateful to them. So thank you, ICF.
4: My name is Santakishore. I'm from Trivandrum, Kerala. I wrote this exam some years back, but now I got posted and now I'm very happy. I thank our central government for providing such an opportunity. I will take this not only as my work but a service to the nation.
5: My name is Tejinder Singh Kanda. I am from Bathinda, Punjab, and I am selected for junior associate in State Bank of India. I am so grateful for the central government giving me the opportunity to serve the nation.
1: Very inspiring indeed, and perhaps that's the beauty of these stories, that so many different states coming, people coming from different languages, different backgrounds, but one shared feeling of pride to serve the nation. Across the country, Rozgar Melas reflected this spirit, and in West Bengal, appointment letters were distributed in Kolkata, Kharagpur and Siliguri.
2: Aur Rajasthan mein Jaipur, Jodhpur, Ajmer aur Bikaner mein 1100 se adhik yuvaon ko niyukti patra mile. Aur Kerala mein Kendriya Mantri Suresh Gopi ne Rozgar Mela ko yuva shakti ko rashtra shakti mein badalne ka ek mission bataya. Aur sach bhi to yahi hai. Kya Bharat ki sabse badi taakat uske log nahi hai?
1: बिल्कुल है. एंड यस, बिकॉज एवरी अपॉइंटमेंट लेटर हैंडेड ओवर टुडे वाज नॉट मेयरली अ डॉक्यूमेंट, इट

0: was a promise of trust, a promise of opportunity, and a promise that India's future is being shaped by the hands of its own youth. And now, Karishma, हम लोग ने एक दूसरे टॉपिक का भी जिक्र किया था, तो क्यों ना जल्दी से उसको इसका भी जिक्र कर ही लिया जाए. Today is International Turtle Day, and isn't it amazing, Karishma, how our turtles seem to carry a sense of calm wherever they go? Slow, patient, and silent, they travel through water and land as though they are untouched by the rush of the modern world around.
1: बिल्कुल. और श्रोताओं, हर साल 23 मई को दुनिया विश्व कछुआ दिवस मनाती है. यह दिन उन असाधारण जीवों का उत्सव मनाने का है और उनकी रक्षा करने के लिए समर्पित है जो लाखों वर्षों से पृथ्वी पर मौजूद हैं.
0: जी हाँ करिश्मा, वो लाखों वर्षों से मौजूद भी हैं और इनफैक्ट उनका खुद का भी जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत

0: patient and silent. They travel through water and land as though they are untouched by the rush of the modern world around.
1: बिल्कुल. और श्रोताओं, हर साल 23 मई को दुनिया विश्व कछुआ दिवस मनाती है. यह दिन उन असाधारण जीवों का उत्सव मनाने का है और उनकी रक्षा करने के लिए समर्पित है जो लाखों वर्षों से पृथ्वी पर मौजूद हैं.
0: जी हाँ करिश्मा, वो लाखों वर्षों से मौजूद भी हैं और इनफैक्ट उनका खुद का भी जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत बड़ा होता है. एंड समवेयर आई हैड रेड दैट अ मेजर रीजन ऑफ टर्टल्स हैविंग अ यू नो लिविंग वेरी लॉन्ग लाइव्स इज बिकॉज Their breaths are really slow. तो जो हम लोग आजकल एक्सरसाइज में लोग कहते हैं ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, यू नो इनहेल एंड एक्सहेल डीपली. सो दैट इज वन मेजर रीजन के आप अगर पढ़ेंगे, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर हाउ मेनी सेकेंड्स, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग ब्रेथ ऑफ अ टर्टल. सो दैट इज अ वेरी मेजर रीजन फॉर देयर यू कैन से इंक्रीज्ड लाइफ स्पैन. And well, the International Turtle Day was first established in the year 2000, not merely as a celebration, but as a reminder. A reminder that some of nature's most beautiful creations survive quietly, but disappear quietly too. If we fail to notice them.
1: बिल्कुल. और सायरा, जो आप जिक्र कर रही थी वही बात हम आगे बढ़ाएंगे कि कछुआ हमें एक बहुत ही गहरा और सार्थक सबक भी सिखाते हैं, वह है जुझारूपन. वे हमें सिखाते हैं कि धीमा होने का मतलब कमजोर होना नहीं है और शांत होने का मतलब महत्वहीन होना नहीं है.
0: अनफॉर्चुनेटली देखिए ना, बड़े शहरों में खास तौर से, बड़े शहरों में आजकल की दुनिया ही इतनी जल्दबाजी की हो गई है कि लोगों को यही लगता है कि अगर कोई शांत है तो वो स्लो है. और वी हैव ग्लोरिफाइड यू कैन से ओवर वर्किंग विच इज वेरी बैड. इट्स अ बैड प्रेसिडेंट बिकॉज यू नो वी शुड लुक फॉरवर्ड टू अ स्लो लाइफ इज वेल बिकॉज दैट इज वॉट मेक्स अ लाइफ यू कैन से फुल ऑफ क्वालिटी टाइम. एंड वी कैन प्रॉब्ली लर्न फ्रॉम टर्टल्स. वेल, टर्टल्स आर रेप्टाइल्स हु बिलोंग टू द ऑर्डर ऑफ टेस्टुडिनेस. Not exactly reptiles, we can say they are amphibians, and they can be found in freshwater rivers, ponds, wetlands, and even deep oceans. Some spend most of their lives swimming through vast seas, while others prefer life on land. That brings us to a question that many people often ask. Are turtles and tortoises the same?
1: खैर, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी कछुए टर्टल होते हैं, लेकिन सभी टर्टल कछुए नहीं होते. कुछ कछुए पूरी तरह से ज़मीन पर रहते हैं, जबकि कई टर्टल कुछ हद तक या ज़्यादातर पानी में रहते हैं. एक और दिलचस्प बात यह है कि टर्टल ठंडे खून वाले जीव होते हैं, जिनमें एक्टोथर्म भी कहा जाता है. इंसानों की तरह अपने शरीर की गर्मी खुद पैदा करने के बजाय वे अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए गर्म और ठंडी जगहों के बीच आते जाते रहते हैं. और धीमे धीमे अपने मेटाबॉलिज्म की वजह से कुछ टर्टल बिना खाए या पानी पिए भी, हैरानी की बात है कि काफ़ी लंबे समय तक वो जिंदा भी रहते हैं.
0: That's right. And, well, see, Turtles especially are among the greatest travelers of the natural world. Species like the olive ridley, the green turtle, hawksbill, leatherback and loggerhead, they cross enormous oceans during their lifetime. Well, that's really astonishing, isn't it?
1: बिल्कुल. और भारत के पास इस मामले में गर्व करने की हर वजह है. हमारा देश कछुओं की अद्भुत विविधता का घर है. असल में भारत में ताजे पानी के कछुओं के लगभग 30 प्रजातियां पाई जाती हैं और उत्तर प्रदेश, असम तथा पश्चिम बंगाल जैसे राज्य इनके लिए महत्वपूर्ण आवास बन गए हैं.
0: That's right. And in fact, even the beaches of Odisha, we have you know read that the olive ridley turtle वो वहाँ पे nesting करते हैं. And it's actually it is home to 5 species of sea turtles, including the olive ridley, green turtle, the loggerhead. But sadly, these beautiful creatures are also facing growing dangers, especially we सी इन फैक्ट जितनी भी मरीन लाइफ है, हम सब लोग परेशान हैं. जो ह्यूमन वेस्ट, जो खासतौर से प्लास्टिक वेस्ट हम लोग पोर कर रहे हैं इन आर वाटर बॉडीज, आई थिंक दैट इज़ रियली पोजिंग अ डेंजर टू टर्टल्स इटसेल्फ. एंड दे आर फ्लोटिंग इन रिवर्स एंड ओशंस, दे आर श्रिंकिंग हैबिटेट्स. Climate change is happening, illegal wildlife trade threaten their survival every single day as well.
1: बिल्कुल. और इसलिए श्रोताओं, हम सभी को समझना जरूरी है कि समुद्र में तैरता हुआ एक प्लास्टिक का थैला हमें शायद बेजान और नुकसान रहित लगे, लेकिन एक कछुए के लिए यह खाने जैसा दिख सकता है. और इंसानों की एक छोटी सी लापरवाही किसी जीव की जान ले सकती है. गैर कानूनी तस्करी भी एक और गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है, खासकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, जहां अक्सर कछुओं का शिकार उनके मांस, पालतू जानवर बनाने या फिर पारंपरिक दवाओं के लिए किया जाता है.
0: एंड दैट रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस. कैन अ स्पीशीज दैट सर्वाइव्ड डायनासोर्स ट्रूली डिसअपीयर बिकॉज ऑफ ह्यूमन?

0: carelessness. Well, maybe yes, maybe no, but we have to be very, very protective about them. And thankfully, conservation efforts across India are giving hope. Uttar Pradesh has emerged as a leader in turtle conservation with dedicated centers in Kukrail, in Lucknow, Sarnath, in Varanasi, Chambal in Ottawa, and even a 30-kilometer turtle sanctuary in Prayagraj. मेरे ख्याल से बहुत कम लोग को पता होगा इस चीज के बारे में.
1: बिल्कुल, और इसके साथ ही श्रोताओं, वन विभाग कछुओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए भी सक्रिय रूप से काम कर रहा है, विशेष रूप से पीलीभीत जैसे क्षेत्रों में. अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व में माला नदी के किनारे पर एक नया कछुआ संरक्षण और अनुसंधान केंद्र विकसित कर रहा है. ये प्रयास हमें याद दिलाते हैं कि संरक्षण का अर्थ केवल वन्य जीवों की रक्षा करना ही नहीं बल्कि प्रकृति के नाजुक संतुलन को बनाए रखना और हमारे सामूहिक भविष्य को सुरक्षित रखना भी है.
0: So perhaps this World Turtle Day, the next time we stand by a river bank or gaze at the ocean or spot a turtle maybe just on a television screen, we should remember that beneath that gentle and unhurried movement lives a story millions and millions of years old.
1: बिल्कुल, और शायद असली सवाल ये नहीं है कि क्या कछुओं को अपने अस्तित्व के लिए हमारी ज़रूरत है या नहीं है. असली सवाल ये है कि क्या इंसानियत सचमुच प्रकृति के उन अजीबों की रक्षा करे बिना ही फल फूल सकती है जो इस ग्रह को सबसे पहले इतना सुंदर बनाते हैं. और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
0: वेल करिश्मा, तो वो वक्त आ गया है जब हम लोग देश की परिक्रमा पे निकलते हैं, तो अपना सफर सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रॉम सिक्किम. Well, Sikkim is set to get its second international trade gateway after the Nathula Pass in West Sikkim. Let's hear more from our correspondent.
2: Plans underway to develop a multimodal corridor and integrated checkpost at Chewa Wangjiang in West Sikkim along the India-Nepal border. The project gained momentum after Chief Minister of Sikkim, Mr. Prem Singh Tamangole, visited Chewa Wangjiang in 2024 and announced plans to develop a trade and connectivity corridor with Nepal. Recently, the Standing Committee of the State Board for Wildlife under the Department of Forest held a meeting chaired by Minister of Forest Government of Sikkim, Pinso Namgyal Lepcha, regarding this project. According to Chief Conservator of Forest, Mr. Uday Gurung, the committee has given in-principle approval for the proposed multimodal corridor and integrated checkpost. The project aims to boost cross-border trade, tourism, and regional economic integration between India and Nepal. The proposed facility will include cargo handling services, warehousing, banking, healthcare, parking areas and other essential services under one roof. Popular religious destination Pathibhara Devi Temple in Nepal currently takes around 12 hours to reach via Darjeeling in West Bengal. However, travel time could reduce to nearly 5 hours once the new corridor becomes operational. Government of Sikkim has already constructed an 18-kilometer road connecting Uttare to Chewa Wangjiang, paving the way for future trade and movement between the two neighboring countries. With Manush Pradeep Sharma, this is Moinak Chatterjee from Akashvani News Gang Talk for Parikrama.
1: और सिक्किम के बाद अब चलते हैं उत्तराखंड, क्योंकि हिमालयी वादियों में इन दिनों आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है. एक और चमोली जिले में स्थित सिखों के प्रसिद्ध तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, तो वहीं दूसरी ओर चारधाम यात्रा में भी देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. एक रिपोर्ट.
3: चमोली जिले की ऊंची हिमालय की चोटी के बीच स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट आज पूर्वाह 11:30 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए. कपाट खुलते ही पूरा क्षेत्र जो बोले सो निहाल, सस्त अकाल के जयकारों से गूंज उठा. बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पल का साक्षी बनकर मत्था टेका और गुरु घर में अरदास की. समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब सिख धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में गिना जाता है. मान्यता है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ तपस्या की थी. हेमकुंड साहिब यात्रा का मुख्य पड़ाव गोविंद घाट से शुरू होता है. यहाँ से श्रद्धालु घांगरिया से होते हुए कठिन पैदल यात्रा कर गुरुद्वारे तक पहुँचते हैं. यात्रा शुरू होने से पहले मार्ग से बर्फ हटाने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और श्रद्धालु की सुविधा से जुड़ी तैयारियां पूरी कर ली गई थी. प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने यात्रियों के लिए स्वास्थ्य, आवास

0: पास और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। उधर चारधाम यात्रा भी पूरे उत्साह के साथ जारी है। इस वर्ष अब तक लगभग 19 लाख श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। इसमें केदारनाथ धाम में सबसे अधिक लगभग 7,91,000 श्रद्धालु पहुंचे, जबकि बद्रीनाथ में करीब 5 लाख श्रद्धालु ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी लगभग 6.5 लाख तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड की हिमालयी वादियों में इन दिनों आस्था अपने चरम पर दिखाई दे रही है। कहीं गुरुवाणी की मधुर स्वर गूंज रही है तो कहीं मंदिरों की घंटियां और हर हर महादेव के जयकारे वातावरण को भक्तिमय बना रहे हैं। बर्फ से ढकी चोटियां, ठंडी हवाएं और श्रद्धालु की अटूट आस्था के बीच उत्तराखंड एक बार फिर आध्यात्मिक ऊर्जा और सांस्कृतिक विरासत की जीवंत तस्वीर बनकर उभर रहा है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से साक्षी सिंह।
1: एंड फ्रॉम अप नॉर्थ इन देहरादून वी नाउ गो डाउन साउथ टू तिरुवनंतपुरम। HLL Life Care Limited, it's a Government of India enterprise under the Ministry of Health and Family Welfare, recently launched a new range of compostable sanitary napkins in Tiruvananthapuram. The product was launched by the Union Health Secretary, marking a major step towards promoting menstrual hygiene and environmental sustainability. Let's hear more from our correspondent.
2: The newly introduced sanitary napkins are made using compostable materials aimed at reducing plastic waste and encouraging eco-friendly disposable practices. The initiative comes at a time when concerns are growing over the environmental impact of conventional sanitary products in India. HLL officials said the new range combines comfort, hygiene, affordability and sustainability, making it accessible to women in both urban and rural communities. The company added that innovation-driven healthcare solutions remain central to its mission, particularly in the areas of women's health and public well-being. The rollout is part of this public sector organization's broader efforts to strengthen menstrual health awareness and expand access to quality hygiene products through healthcare institutions, public distribution systems, and outreach programs. Public health experts say sustainable menstrual products can help reduce environmental burden while promoting safer hygiene practices among women and adolescents. HLL Life Care Limited is known for manufacturing health care products, including contraceptives, pharmaceuticals, and medical devices. The organization also contributing significantly to affordable and accessible health care in India. Smithy M. Palliruthi, Akash.
3: और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। और श्रोताओं, अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
1: इट्स नाउ टाइम फॉर आजादी का सफर।
4: आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी पनम पिल्ली गोविंद मेनन को याद कर रहे हैं। उनका निधन 23 मई 1970 को हुआ था।
5: मेनन का जन्म 1 अक्टूबर 1908 को केरल के त्रिशूर में हुआ था। विद्यार्थी जीवन में ही मेनन राजनीति में भाग लेने लगे थे। उन्होंने केरल में वाइकॉम सत्याग्रह के जाति विरोधी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था।
4: प्रजामंडलम में शामिल होकर वो राजनीति में और अधिक सक्रिय रहे। बाद में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। मेनन केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के भी सदस्य रहे।
5: पेशे से वकील मेनन 1935 और 1938 में दो बार कोच्चि विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। कोच्चि सरकार की दमनकारी नीति के विरोध में 1942 में मेनन ने त्यागपत्र दे दिया।
4: उन्हें 1945 में फिर से कोच्चि विधानसभा के लिए चुना गया। मेनन ने 1946 में कोच्चि के खाद्य मंत्री के पद पर काम किया। वो 1947 में प्रांत के मुख्यमंत्री बने। मेनन ने संविधान सभा में कोच्चि रियासत का प्रतिनिधित्व किया।
5: त्रावणकोर कोच्चि राज्य के गठन के उपरांत मेनन 1952 में राज्य

0: के वित्त मंत्री बने। उन्होंने त्रावणकोर कोची राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर भी कार्य किया।
1: वो 1962 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहयोग मंत्रालय का कामकाज संभाला। मेनन 1967 में रेल मंत्री, कानून मंत्री और समाज कल्याण मंत्री भी रहे।
0: मेनन ने सार्वजनिक कार्यों में विविध प्रकार की भूमिका निभाई। उन्हें वंचित वर्गों के हिमायती के रूप में जाना जाता है। वे शिक्षकों की स्थिति में सुधार के लिए जाने जाते हैं।
1: उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वो जीवन भर राष्ट्र की सेवा करते रहे। महान राष्ट्रवादी पनमपिल्ली गोविंद मेनन को हमारा नमन। 23 मई 1947 को ब्रिटिश कैबिनेट ने गवर्नर जनरल माउंटबेटन की भारत विभाजन नीति को पारित कर दिया। इस नीति के तहत दो नए राष्ट्र भारत और पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव था। रियासतें दोनों अधिराज्यों में से किसी में भी मिलने को स्वतंत्र थी। रियासतों के पास किसी भी अधिराज्य में शामिल न होकर स्वतंत्र रहने का विकल्प भी था। भारतीय नेताओं ने इस योजना का विरोध किया क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि इससे भारत की एकता और संप्रभुता को खतरा था।
0: हम आज हनुमान सिंह को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। शुरू में हनुमान सिंह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सेना में नौकरी करते थे, लेकिन बाद में नौकरी छोड़कर वे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ शामिल हो गए।
1: उन्होंने विभिन्न अवसरों पर अंग्रेजों से लोहा लिया और सहयोगी सेनानियों की आर्थिक सहायता भी की। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने हनुमान सिंह को गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेजों से राजद्रोह करने का मुकदमा उन पर चलाया। उन्हें 1857 में लोहे की बेड़ियों में जकड़कर सश्रम आजीवन कारावास के लिए निर्वासन की सजा दी गई। अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल में 23 मई 1858 को उनका निधन हो गया। मां भारती के महान सपूत हनुमान सिंह को हमारा शत शत नमन।
2: और इसके साथ ही आज भारतीय शास्त्रीय संगीत की सुप्रसिद्ध गायिका वसुंधरा कोमकली की जयंती है। वसुंधरा कोमकली का जन्म आज ही के दिन जमशेदपुर में हुआ था। उन्होंने ग्वालियर घराने की परंपरा को अपनी विशिष्ट शैली में आगे बढ़ाया। वसुंधरा कोमकली ने ख्याल गायन, निगुण भजन और लोक धुनों को बेहद भावपूर्ण अंदाज में प्रस्तुत किया और वे लंबे समय तक आकाशवाणी और दूरदर्शन की नियमित कलाकार भी रही थी तथा देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित संगीत समारोह में अपनी प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2006 में पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

0: நேர்களே, இதே அலைவரிசையில் நாளைய அரங்கிசையில் ஸ்ரீராம் கண்ணன் அவர்களின் பாட்டு கேட்கலாம். டாக்டர் உஷா ராஜகோபாலன் அவர்கள் வயலின், ஆர் ரமேஷ் அவர்கள் மிருதங்கம். நாளை காலை 9 மணிக்கு இசை பெட்டகத்தில் மகாராஜபுரம் வி சந்தானம் அவர்களின் பாட்டு இடம்பெறும். மகாராஜபுரம் எஸ் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் உடன் பாடியுள்ளார். வி தியாகராஜன் அவர்கள் வயலின். பாலக்காடு ஆர் அஹரியரன் அவர்கள் மிருதங்கம். சில நொடிகளில் தொடரும் செய்தி அறிக்கை. டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने

0: मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: रोजगार मेले में आज 51,000 से भी अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। श्री गोयल ने कहा कि 33,600 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन वाली भारत औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घनमीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज दक्षिण पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: நேரம் மாலை 6:05. ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலி 100.1 FM கோல்டு பண்பலை வரிசை. இந்த அலைவரிசையில் இனி வரையறுக்கும் நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய அறிவிப்பு. இந்த அறிவிப்பினை தொடர்ந்து திரையிசை. 6:30 மார்க்கெட் மந்த்ரா, 7:10 இரவு 8:40 திரைகாணம், 7:50 செய்தி கதம்பம், 8:10 ஆலமரம் நாடகம், எழுதியவர் காவனூர் வேலன் அவர்கள், நடித்துள்ளவர்கள் KRS குமார், சி சிவகாமி, எஸ் ரமேஷ், பத்மஸ்ரீ ஆர் அருணா, வி வினோதினி, எல் மோகன் ஆகியோர், அமைப்பு எஸ் அண்ணாமலை பாண்டியன். 9:15 ஸ்பாட்லைட், 9:30 தேசிய அறிவியல் ஏடு, 10:10 விஸ்வதர்பன், 10:20 வேர்ல்டு நியூஸ், 10:30 மேற்கத்திய இசை, 11:10 திரைகாணம். இனி இதே அலைவரிசையில்

0: திரையிசை கேட்டீர்கள். தொடரும் செய்தி அறிக்கை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: नईम को दीजिए इजाजत और संस्कृत में समाचार सुनिए।
2: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललित मोहनः तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एकोनविंशतितमे आजीविका मेलके अद्य प्रशासनस्य विभिन्न विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तेभ्यः एकपञ्चाशत्सहस्राधिकेभ्यः युवकेभ्यः नवनियुक्तिपत्राणि प्रदत्तानि। बिहार प्रशासनेन घोषितं यत् आगामिषु पञ्चवर्षेषु राज्ये एकलक्ष शिक्षकाणां नियुक्तिः भविष्यति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद इत्यनेन द्वादशी कक्षायाः वार्षिक परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां प्रतिलिपिं प्राप्तुम् आवेदनस्य अन्तिमा तिथिः एकदिवसपर्यन्तं वर्धिता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा अमेरिका

0: का देशस्य विदेश मंत्री मार्को रूबियो च भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक संधिं सुदृढ़ीतुं चर्चां कृतवन्तौ। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो देशे इबोला संक्रमणस्य बुंदीबुग्यु प्रभेदस्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटं राष्ट्रीय स्तरे उच्चतः अतीव उच्चस्तरे वर्धितम्। अपि च IPL 20-20 क्रिकेट क्रीडा स्पर्धायां अद्य लखनऊ सुपर जायंट्स पंजाब किंग्स दलयो मध्ये लखनऊ नगरे स्पर्धा भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21वें आजीविका मेलके अद्य प्रशासनस्य विभिन्न विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तेभ्य 150,000+ युवकेभ्य नियुक्तिपत्राणि प्रदत्तानि। एतत् आजीविका मेलकं सम्पूर्णे देशे 47 विभिन्न स्थानेषु आयोजितः आसीत्। सम्पूर्ण देशात् चयनिताः एते नूतन कर्मचारिणः रेलमन्त्रालये, गृहमन्त्रालये, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालये, उच्चशिक्षाविभागे च इत्यादिषु विभिन्न मन्त्रालयेषु विभागेषु च स्वसेवाः प्रदास्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवदत् यत् प्रशासनिक नियुक्तयः नागरिकाणां जीवनं श्रेष्ठतरं सुलभतरं च कर्तुं महत्वपूर्णं साधनम् अस्ति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् राष्ट्रेण स्वीय कर्मयोगिषु विश्वासः प्रदर्शितः अस्ति। अधुना तेषां दायित्वमस्ति यत् ते स्वीयया निष्ठया सदाचारेण दैनिककार्येण च तस्य विश्वासस्य मानं रक्षेयुः।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: श्री मोदी अवदत् यत् सम्पूर्णः विश्वः भारतस्य विकासयात्रायां सम्मिलितुं भवितुम् उत्सुकः अस्ति। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् प्रत्येकः भारतीयः विकसितभारतस्य निर्माणाय सङ्कल्पेन सह कार्यं करोति। अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये राष्ट्रं बहुषु क्षेत्रेषु निवेशं करोति। प्रधानमन्त्री यूनां कृते नूतनवृत्त्यावसराणां सृजनं क्रियमाणम् इति विशेषरूपेण अवदत्।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: श्री मोदी अग्रे उक्तवान् यत् प्रत्येकः भारतीयः 47-20 भारतं विकसित भारतं कर्तुं दृढ़ संकल्पेन कार्यं करोति।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री नवनियुक्तान् पदाधिकारिणः IGOT इति कर्मयोगी मञ्चस्य सम्यक् लाभं ग्रहीतुं प्रोत्साहितवान्। सः उक्तवान् यत् एतेन ते स्वकर्तव्यानि सरलतया अवगन्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। श्रीमोदी विश्वासः प्रकटितवान् यत् एते नवनियुक्ताः पदाधिकारिणः राष्ट्रस्य प्रगतौ योगदानं दास्यन्ति तथा च तेषां कार्याणि, निर्णयाश्च विकसितभारतस्य दृष्टिकोणं साकारयितुं महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यन्ति। राजस्थानस्य जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर चेत्यादिषु नगरेषु आजीविका मेलकम् आयोजितं, यत्र 11,000+ युवकेभ्यः नियुक्तिपत्राणि वितरितानि। रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः राज्यस्तरीय आजीविका मेलके सहभागित्वं कृतवान्। जयपुरे आयोजिते कार्यक्रमे श्रीवैष्णवः सभां सम्बोधयन् अवदत् यत् रेलविभागे 60,000+ नियुक्तिप्रक्रिया प्रचलति, यस्मिन् 40 कोट्यधिकाः अभ्यर्थिनः सहभागं कुर्वन्ति। पंजाबराज्यस्य अद्य कपूरथला पटियाला चेत्येतयोः द्वयोः स्थलेषु 21वें आजीविका मेलकम् आयोजितं, यत्र 81,200 नवलाभार्थिभ्यः नियुक्तिपत्राणि वितरितानि। कपूरथला स्थिते आरसीएफ संस्थाने

0: 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers if you're calling from either a landline or even a mobile. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Amit Goyal.
1: Namaskar, Market Madhur Karyakram mein aapka swagat hai. आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों, शेयर बाजार की हलचल के साथ साथ हम आपके फोन कॉल को भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर आप हमें फोन करके प्रश्न पूछ सकते हैं, परंतु किसी भी विशेष कंपनी या स्टॉक से जुड़ी जानकारी हम इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। आप हमें हमारे फोन नंबर 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106 पर फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का स्टडी कोड 011 भी डायल करें। आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। शरद, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद अमित, धन्यवाद अनुभव और सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन।
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अनुभव।
0: थैंक यू अमित। Prime Minister Narendra Modi distributes over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments, says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Indian equities wrap up the week with gains and global crude oil prices tumble sharply over the week.
1: आर्थिक सुर्खियों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों में नवचयनित युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि देश युवाओं को वैश्विक अनुभव, रोजगार और अवसर दिलाने के लिए विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। घरेलू शेयर बाजार में इस सप्ताह मजबूती का रुझान और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट।

0: And before we begin with our top story, there is an important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले प्रधानमंत्री रोजगार मेले के बारे में बात करते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरी देशवासियों को जीवन को आसान बनाने का एक मजबूत माध्यम है. प्रधानमंत्री ने कहा, देश को अपने कर्मयोगी युवाओं पर भरोसा है और युवाओं की जिम्मेदारी है कि वो अपनी प्रतिबद्धता तथा दैनिक कार्यों से भरोसा कायम करने का प्रयास करें. श्री मोदी ने कहा कि हमारा देश विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी भी कर रहा है. यह रोजगार मेला पूरे देश में 47 जगहों पर आयोजित किया गया. पूरे देश से चुने गए चयनित उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे. कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले जयपुर से एक श्रोता नवनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं. नवनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए.
2: हाँ नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम. मेरा प्रश्न जो है वो बढ़ते हुए एफआईआई के आउटफ्लोस को लेकर है और पिछले 2 साल से हम सब लोग जानते हैं कि स्टॉक मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया और इस वक्त जो एफआईआई का जो ओवरऑल जो लेवल है वो ऑल टाइम लो है और हम सब लोग जानते हैं कि एफआईआई का ये जो आउटफ्लो है इसका कारण क्या है. लेकिन भारत सरकार की ओर से, वित्त मंत्रालय की ओर से इसके ऊपर ना तो कोई ऐसा कोई स्पष्टीकरण दिया गया है और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो भारतीय स्टॉक मार्केट के अंदर जो टैक्सेशन की रेट है वो ऑल सबसे ज्यादा है इमर्जिंग मार्केट के अंदर और इन्हीं एफआईआई के आउटफ्लो के कारण हमारे इमर्जिंग मार्केट्स में जो है भारत का जो अब वेटेज है बहुत नीचे आ चुका है और हालांकि इसको बराबर जो सपोर्ट मिला हुआ है वो रिटेल इन्वेस्टर्स और एसआईपी के इनफ्लो से है. लेकिन ये
1: मैं समझता हूँ जहां तक आप पूछना चाह रहे हैं कि एफआईआई का आउटफ्लो के कारण क्या है और सरकार क्या इसमें कुछ कर सकती है.
3: देखिए नवनीत, एफआईआई को जो आउटफ्लोज है ये बहुत लोगों के मन में ये अंदेशा है कि ये क्या क्या है. देखिए पहली बात तो जिस व्यक्ति ने 100 रुपये लगाया है कोविड के टाइम या कोविड के बाद, अगर आप बताइए नवनीत, अगर आपने कहीं 100 रुपये लगाया और कल को 150 उसका वैल्यू हो जाता है तो क्या आप प्रॉफिट बुक करके नहीं निकलना चाहेंगे? क्या भारत सरकार कोई

0: ऐसा नियम बना सकती है कि अगर आपने मुनाफा कमा लिया है पर आपको यहाँ इतने दिन तक रुकना पड़ेगा, आप अपना पैसा देखिए, वो यहाँ पर स्वतंत्र हैं, अपना पैसा जब चाहें लगा सकते हैं, जब चाहे निकाल सकते हैं। और ये सच है कि हमारी जो पीई थी वो पीछे थोड़ी हाई थी, हमारी मार्केट ऐसे बोलते थे वो लोग थोड़ी महंगी है, कभी चाइना की महंगी हो जाती है, आजकल चाइना वियतनाम कोरिया की मार्केट सस्ती है, तो यहाँ से वो लगा रहे हैं। और उसमें एक अच्छी बात जो मैं ज़रूरी बात बताना चाहता था नवनीत आपको, पहले तो टैक्स का रेट हमारा ज़्यादा नहीं है, हम 12.5% हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेट है, थोड़ा बहुत विदेशियों के लिए फ़र्क होता है। मैं आपको ज़रूरी बात बताना चाह रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है ये कि हमारा पहले FIIs का वेटेज नवनीत जी 25% के करीब था भारत में, और मुझे लगता है हमारी मार्केट धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो रही है, इनकी मात्रा कम हो रही है। और भारतीय जो आपने बताया रिटेल निवेशकों की मात्रा, अब ये घट के 15-16% तक आ चुका है, और जैसे जैसे इनका घटेगा, आप देखिए कि जिस हिसाब से इन्होंने माल बेचा है यहाँ पर नवनीत, आपको मैं बहुत ज़रूरी बात बताना चाहूँगा, हम 26,377 सबसे हाई था आज तक मार्केट का निफ्टी की बात करें
1: जी,
0: आज भी हम ये युद्ध की वजह से हम 23,500-24,000 पे, अगर युद्ध ना होता तो शायद हम उस ऑल टाइम हाई को पार कर चुके होते। तो देखिए जिस हिसाब से इन्होंने माल बेचा, 2,00,000 करोड़ का तो इसी साल बेच दिया है, जिस हिसाब से इन्होंने यहाँ बेचा है नवनीत, उस हिसाब से तो हमें गिर के 10-15,000 निफ्टी पे आ जाना चाहिए था। पर देखिए किस प्रकार से जो हमारे देसी बॉयस हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने किस प्रकार से संभाला था। मुझे लग रहा है हमारी मार्केट मैच्योर हो रही है, आत्मनिर्भर हो रही है, ये आए तो इनका स्वागत है, पर ये जाएं तो हम इनको खुशी से ही विदा करें। भारत सरकार ऐसे नियम नहीं बना, अगर ऐसे नियम भारत सरकार बनाएगी फिर तो ये रेगुलेटेड मार्केट हो जाएगा, मार्केट स्वाभाविक तौर पर नहीं चल पाएगा।
1: वैश्विक तौर पर भी कभी भी किसी भी विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए इस तरह से आउटफ्लो करना के लिए प्रतिबंध बहुत सीमित है।
0: नहीं, प्रतिबंध लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर देखिए आपने मुनाफा कमाया नवनीत, तो आपको मैं कहूँ नहीं अभी आप नहीं इसको ले जा सकते, तो ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है नवनीत को बहुत चिंता की बात नहीं है। अच्छा है हमने नवनीत के सवाल को बहुत खोल कर जवाब दिया, क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं के मन में आजकल ये बात है, क्योंकि कुछ हद तक रुपये का कमजोर होना का कारणों में से एक ये कारण है। तो नवनीत आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हमें अपने पैसे पर, अपनी डोमेस्टिक मार्केट पर हमें पूरा विश्वास है, और हम खुद इसको संभालेंगे, अब हम विदेशियों के सहारे नहीं रहेंगे। आए तो स्वागत है, जाएं तो हमें कोई नाराजगी।
1: 85% अभी भी घरेलू संस्थागत और घरेलू निवेशक ने इसको
0: बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल।
2: Now let's take the next call coming in from Delhi. Siddharth is online with us. Siddharth, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
1: Siddharth, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो अपना प्रश्न पूछिए।
2: Looks like that particular caller is not with us. So let's take the next call again coming in from Delhi. Amit Jha is with us from Delhi. Amit, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
3: नमस्कार सर
2: जी। नमस्ते, अपना सवाल पूछे।
3: सवाल ही पूछ रहा हूँ सर। नमस्कार सर।
0: हाँ नमस्कार।
3: सर हाँ, पिछले बार आपने डिस्कस किया था आईटी कंपनी के बारे में, सर सुन ली हमारी बात, आईटी कंपनी ने इस हफ्ते बढ़िया चली है सर
0: जी।
3: और दूसरा सर प्रश्न ये है कि जो अभी 5 देशों की यात्रा पे गए थे हमारे प्रधानमंत्री सर
0: जी,
3: तो उनसे क्या भारत के दृष्टिकोण से हमें क्या हासिल होगा, या हमारे दृष्टिकोण से क्या क्या मजबूत पक्ष है? ग्रीन, हालांकि ग्रीन हाइड्रोजन और ब्लू इकोनॉमी पे बात हुई थी, ये ब्लू इकोनॉमी और ग्रीन हाइड्रोजन कैसे क्या क्या है सर, बताइए।
0: देखिए अमित, प्रधानमंत्री जी ने जितने भी 5 देशों की यात्रा करी, UAE से शुरू हुई थी, उसके बाद स्वीडन, नॉर्वे, वहाँ नॉर्डिक सम्मेलन में भी वो गए, इटली भी लौटते में आए, तो प्रधानमंत्री जी तो सोते भी नहीं हैं, वो प्लेन में सो जाते हैं और अपना जो आराम करना होता है, और जहाँ जहाँ भी कभी भी वो खाली हाथ नहीं आते हैं, मतलब वो ऐसी जगह जाते ही नहीं है जहाँ पर उनको लगे कि कोई करार, कोई पैक्ट, कोई डील, भारत में निवेश, इस प्रकार की चीज़ें। ब्लू इकोनॉमी आपने बिल्कुल ठीक कहा, ब्लू इकोनॉमी के बारे में भी, क्योंकि नॉर्डिक का बहुत बड़ा रीजन, जो नॉर्डिक नेशंस इनको बोलते हैं, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, ये जो नेशन आइसलैंड है
2: जी।
0: तो यहाँ पर बहुत बड़ी ब्लू इकोनॉमी का समुद्र यहाँ लगता है, उससे भारत के करार हुए हैं, एनर्जी में हुए हैं, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हुए हैं, डिफेंस क्षेत्र में हुए हैं, खाने, फूड सिक्योरिटी पर बात हुई है बहुत। और धीरे धीरे होता क्या है कि ऐसे टूर के परिणाम, ऐसा नहीं होता कि प्रधानमंत्री जी आज वापस आए और अगले दिन आपको सारा कुछ टेबल पे दिख गया, ये करार लॉन्ग टर्म होते हैं, आने वाले महीनों में, आने वाले क्वार्टर्स में आपको इनका असर दिखाई देगा। हमें इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं, तरह तरह के कमेंट्स आते हैं, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी से ज़्यादा कर्मठ मैंने प्रधानमंत्री देखा नहीं, क्योंकि प्लेन में सो जाते हैं, वो आराम भी नहीं करते हैं, और कोशिश करते हैं जिस देश में जितना समय बिता रहे हैं उसको पूरी तरह से देश के हित में इस्तेमाल किया जाए
2: जी।
1: जयपुर से अगले श्रोता के तौर पर जितेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं जी। जितेंद्र नमस्कार।
4: एक और सवाल पूछना था, आपका जवाब सुन रहा था, तो ये बताइए जैसे प्रधानमंत्री जाते कहीं भी खाली हाथ वापस नहीं आते हैं तो बात ठीक है, लेकिन विदेशी निवेशक तो हमारे मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, तो कहीं उनको लगता होगा कि यहाँ पे ग्रोथ नहीं है तो निकाल रहे होंगे, एक तरफ

0: थोड़ा एक तो पैसे निकल रहे हैं तो ये विरोधाभास है, पहला प्रश्न ये था। और दूसरा है कि कौन सा सेक्टर अभी चलता है।
1: अच्छा, पहले मैं जितेंद्र आपका पहला विरोधाभास, इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन है वो मैं दूर कर देता हूँ। प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं तो मैं जिस निवेश की बात कर रहा था वो लेकर आते हैं। यहाँ हम FDI की बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो भारत में फैक्ट्रीज लगती हैं, भारत में ऑफिसेज खुलते हैं, भारत में बैक एंड ऑफिसेज प्रोसेसिंग यूनिट्स खुलते हैं। ये जो आप निकालने की बात कर रहे हैं ये शेयर मार्केट में जो FII वाले हैं, इनको तो इनको कहीं हमें जाके बुलाना नहीं पड़ता, ये तो दुनिया भर की मार्केट पे जहां बैठे हैं वहीं से नजर रखते हैं। तो प्रधानमंत्री जी FDI की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी यहां की शेयर मार्केट के लिए डायरेक्ट बात नहीं करते। हाँ, प्रधानमंत्री जी की प्रेजेंस को, उनकी बातें सुन के, देश की तरक्की के बारे में सुन के विदेशी संस्थागत निवेशक आके निवेश करना चाहते हैं वो वेलकम है, पर यहाँ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन है। FII और FDI के बीच में आपको

0: प्रोसेसिंग यूनिट्स खुलते हैं। ये जो आप निकालने की बात कर रहे हैं, ये शेयर मार्केट में जो FII वाले हैं, इनको तो इनको कहीं हमें जाके बुलाना नहीं पड़ता, ये तो दुनिया भर की मार्केट पे जहाँ बैठे हैं वहीं से नज़र रखते हैं। तो प्रधानमंत्री जी FDI की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी यहाँ की शेयर मार्केट के लिए डायरेक्ट बात नहीं करते। हाँ, प्रधानमंत्री जी की प्रेजेंस को, उनकी बातें सुन के, देश की तरक्की के बारे में सुन के विदेशी संस्थागत निवेशक आके निवेश करना चाहते हैं, वो वेलकम है। पर यहाँ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन है, FII और FDI के बीच में आपको फर्क इसमें समझना होगा। सेक्टर आपने पूछा, मुझे लगता है डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, FMCG, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले, जो ये चार पांच सेक्टर, वैसे तो और भी हैं पर बहुत ज़्यादा बताऊंगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, इन सेक्टर्स पर आप नज़र जितेंद्र रख सकते हैं। पर शर्त एक है, अगर आप शर्त के लिए मानेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, वो शर्त यह है कि आप थोड़ा थोड़ा करके और लंबे वक्त के लिए निवेश करें, और जो शुरू में अनुभा ने डिस्क्लेमर पढ़ा था उसको भी दिमाग में रखें।
1: एंड सिद्धार्थ हैज जॉइंड अस अगेन नाउ। सिद्धार्थ, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, ही इज कॉलिंग अस फ्रॉम दिल्ली।
2: गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर, लवली हियरिंग योर वॉइस फ्रॉम द अदर साइड।
0: गुड इवनिंग सिद्धार्थ।
2: My question to you would be, today is, I have been investing in the US markets for the past 6-7 months, and at what rate are the short-term capital gains in the US markets taxed in India, because I'm a resident individual in India? And second question to you would be, what is the uprising sector in your thought in Indian markets in the next 1-1.5 years?
0: Okay. Siddharth, the answer to your second question I just gave for the caller who was, I probably, you were not listening at that time. There was Jitender from Jaipur who called. Let me answer the second part again because it's fresh in my mind. FMCG, renewable energy, defense, electric vehicles, electric batteries. These are the sectors you can keep in mind. Your first question was related to taxation of. See, I must tell you that in different states in the United States, there is a Fed tax and there is a state tax. There is double tax system. They both combine together. But what is more important, Jitender, is that there is an Indo-US double tax avoidance agreement. It's called DTAA. So even if you pay tax in the US, I would suggest, since you are an Indian resident, because you are a regular caller and you're calling from Delhi, I hope you are a resident of India. So you can claim the tax which you have lost in America against your Indian tax. This is what a double tax avoidance treaty is all about, that you set off the tax which you paid in the US on the basis of a TRC which you get, or a W-5 form which you collect from there, or a W-2 form, that which is the tax deducted at source. And that form you produce use while filing the returns in India. So rest assured, you do not have to pay, Jitender, double tax at both the places on the capital gains which you made. I'm very happy to know that you are making money and you are earning something by investing in US market, because there aren't too many people who did do this at this point of time.
1: The next caller we have is from Mumbai, Ratnakar. But before we take your call, Ratnakar, I'll request Amit to give us this next news.
3: जी, सेंसेक्स के बारे में नजर डालते हैं, साप्ताहिक तौर पे क्या रहा। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और पश्चिमी एशिया में तनाव कम करने के लिए राजनयिक प्रयासों के चलते घरेलू शेयर बाजार में सप्ताह बढ़त दर्ज हुई। साप्ताहिक तौर पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.2% की बढ़त से 177 अंक बढ़कर 75,415 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% की मजबूती से 75 अंक बढ़कर 23,719 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप में लगभग 1.4% की बढ़त रही, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप सूचकांक में 0.4% की तेजी रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया साप्ताहिक तौर पर कुल 27 पैसे की मजबूती से 95.70 रुपये पर दर्ज हुआ। सप्ताह के दौरान सूचकांकों में बढ़त के बावजूद विदेशी निवेश के गिरने, मुद्रास्फीति पर सारी चिंताओं और चौथी तिमाही में कंपनियों के मिले जुले नतीजों से निवेशक सतर्कतापूर्ण कारोबार करते नजर आए। मुंबई से रत्नाकर हमारे साथ मौजूद हैं। जी रत्नाकर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए।
4: हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा डेफिनेटली फर्स्ट सवाल है, वो 10 दिन में तीसरी बार पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ गए, वो हम जो सोचते हैं वो कॉमन मैन के लिए ये बहुत महंगा पड़ता है, उसका जीवन पर उसका असर होता है, तो ये तीसरी बार 10 दिन में क्यों बढ़े और वो ऐसा कितना ये दिन चलता रहेगा, एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि एक मशहूर अर्थशास्त्री ने जो बोला है कि डॉलर के मुताबिक जो अपना रुपया 100 तक आने दो, तो उसका मीनिंग क्या है, 100 तक आने दो इसका मीनिंग क्या है। और दूसरे, आपके ही माध्यम से ये समझ में आया था कि कच्चे क्रूड के दाम गिर रहे हैं, ये तीनों का क्या संबंध है, जरा।
0: चलिए रत्नाकर जी, पहले आपने पेट्रोल डीजल का बोला कि पिछले 10 दिन, देखिए जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको

0: अंडर रिकवरी हो रही है, एक वैश्विक संकट है इस समय, और पूरी दुनिया में मेरे पास सारे देशों में जहाँ जहाँ पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ी है, मेरे पास बाकायदा इसकी लिस्ट है, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, यूरोप से लेकर अफ्रीका तक, लगभग लगभग सब देशों में। बल्कि आपको हैरानी होगी रत्नाकर कि अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, उनके अपने देश में, मेरे पास आंकड़ा है, हमारे वहाँ एसोसिएट्स भी हैं मेरे वहाँ पर, उन्होंने मुझे बताया कि $3 था प्रति गैलन, वो लोग गैलन में नापते हैं, हम लोग लीटर में नापते हैं, हम लोग पेट्रोल डीजल बोलते हैं, वो गैस बोलते हैं, $3 प्रति गैलन गैस थी, आज वो बढ़ के $5.5-$6 प्रति गैलन तक पहुंच गई। ये मैं उसका बता रहा हूँ आपको जिनके यहाँ सबसे ज़्यादा ऑयल आता है और किसी पर वो निर्भर नहीं है, उनके अपने यहाँ का ऑयल अपने यहाँ ही खपाते हैं। तो इसलिए ये एक, मैं समझता हूँ, असाधारण परिस्थिति है। कब कब बढ़ाए जाएंगे आगे, ये तो निर्भर करेगा क्रूड ऑयल की प्राइसेस पे, उससे भी ज़्यादा निर्भर करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे, उससे भी ज़्यादा निर्भर करेगा ईरान और यूएस के जो आपस में लड़ाई का माहौल बन रहा है, क्या वो फिर शुरू हो जाएगी, ये सब इस पर निर्भर करेगा। दूसरा, आपने पूछा कि एक मशहूर अर्थशास्त्री ने बोला कि 100 जाने, तो देखिए हमारी अर्थव्यवस्था इम्पोर्ट ओरिएंटेड है। हमारे यहाँ अप्रैल के महीने में ही जो ट्रेड डेफिसिट था वो $28 बिलियन का था, खाली अप्रैल की बात कर रहा हूँ। हमें बहुत सारा सामान बाहर से मंगाना पड़ता है, और पेट्रोल क्रूड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गए, सोना हमने $72 का बिल आया, मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है जो सामान हम बाहर से मंगाते हैं। तो जब इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी होती है तो रुपये गिरने से थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि चाइना और जापान ने जानबूझ के पीछे अपनी करेंसी को कुछ समय पहले डिवैल्यूएट किया था, क्योंकि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। शायद उन अर्थशास्त्री के दिमाग में ये होगा कि हम अब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी धीरे धीरे बन रहे हैं, तो ऐसे में रुपए गिरने का फायदा एक्सपोर्टर्स को सबसे ज्यादा होता है, बल्कि खाली उन्हीं को होता है। तो हो सकता है, देखिए मैं मजेदार बात बताऊं अमित और अनुभव की परमिशन लेके, 1897 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक इकोनॉमिस्ट थी, उनका नाम था मिसेस बारबरा वूटन। उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात बोली कि व्हेन सिक्स इकोनॉमिस्ट सिट टुगेदर देयर आर 7 ओपिनियंस। तो इसलिए अर्थशास्त्री टू अर्थशास्त्री रत्नाकर जी, कई बार ओपिनियन भिन्न हो सकती है, हमें सबकी ओपिनियन को हम रिस्पेक्ट करते हैं।
1: जी नजर डाल लेते हैं, अगर बात तेल की कीमतों की हो रही तो नजर डालते हैं तेल की कीमतों के बारे में ही। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्य में तीसरी बार बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हुई, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया। 15 मई को 3 रुपये प्रति लीटर, 19 मई को 90 पैसे की वृद्धि के बाद ईंधन की कीमतों में तीसरी बार संशोधन है। हाल ही के दिनों में कीमतों में लगभग 5 रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने भी आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। महाराष्ट्र से अमित हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमित, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए।
0: अमित, अपने रेडियो की आवाज प्लीज बंद करें।
1: आपकी आवाज हमें नहीं आ पा रही है।
2: हेलो
0: जी, हमें अपनी आवाज सुनाई दे रही थी।
2: हाँ सर,
0: हम आपकी सुनने के लिए बैठे, बताइए।
3: हाँ सर, अभी मोदी तो बोल रहे कि सोना साल भर खरीदी ना करें, वर्क फ्रॉम होम करें।
0: जी,
3: क्या अभी मौका आएगा हमें सोना खरीदी करने का?
0: देखिये, प्रधानमंत्री जी की अपील है, तो उस अपील के पीछे कारण है जो सातों अपील उन्होंने करी, उसमें जो कॉमन थ्रेड था, सूत्र था, वो था विदेशी मुद्रा को बचाना। तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा थोड़ा मिलकर हर व्यक्ति सहयोग करे, तो इस समय हमारे लिए विदेशी मुद्रा भंडार जो अब $688 बिलियन पे आ गया, युद्ध अभी थोड़े दिन पहले 730 के आसपास था, तो विदेशी मुद्रा भंडार कम खर्च हो। देखिए, जब पैसा कम रह जाता है जेब में, यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार की, तो आप घर में भी बात करते हुए थोड़ा थोड़ा कम खर्च हो, जिससे ज़्यादा दिन तक चल जाए, वो हमारा गुजारा चले। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी की अपील को बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए, और लोग बात मानते भी हैं। आप आज ये सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब आपने सुना, आपने इस पर चिंतन किया। प्रधानमंत्री जी की छोटी छोटी बातें जो हैं वो लोग मानते हैं, उसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण होते हैं। तो इस समय जो समस्या है देश के सामने, विश्व के सामने, वो इस प्रकार की है कि हमें थोड़ा, अंग्रेजी में शब्द होता है फ्रूगल, थोड़ा सा हमें कंजूसी करनी चाहिए। और बचत तो मुझे लगता है, अनुभव राजेश, के आपके अपने, आपकी जो अपनी व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था है उसके लिए भी अच्छी है, पर आपको सोना कहीं पूजा वूजा में रखना है तो बात अलग है। पर मुझे लगता है कि
4: एग्जैक्टली आई वाज अबाउट टू से दैट गोल्ड इज समथिंग, यू नो, इफ इट्स रियली एसेंशियल, बिकॉज़ इट्स नॉट समथिंग दैट यू रिक्वायर इन अ डे टू डे बेसिस।
0: ऐसा नहीं है, उसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। हालांकि शादी ब्याह में कुछ जगह मुझे पता लगा बहुत लोग इसको बहुत इमोशनल हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। क्रूड ऑयल के बिना गुजारा नहीं है, पर सोने के बिना गुजारा हो जाएगा, कुछ ऐसा समझ सकते हैं।
4: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल अगेन, कमिंग इन फ्रॉम महाराष्ट्र, के शुक्ला इज ऑनलाइन विद अस। मिस्टर शुक्ला, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क।

0: question.
1: धन्यवाद, नमस्कार आलोक।
0: नमस्ते, सवाल पूछें।
1: मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जो कोहली जी बोले कि चाइना और ईरान और ये सब अपना करेंसी का वैल्यू कम करते हैं
2: जी,
1: तो उससे उनको क्या फायदा होता है?
2: अच्छा, चलिए शुक्ला जी, बहुत अच्छा सवाल है। चाइना और जापान मैंने बोला, ईरान की तो करेंसी की वैसे ही हालत ख़राब है। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड शुक्ला जी इकोनॉमी होती है, वो अपनी अगर करेंसी को डीवैल्यू करती है तो आप समझिए, अभी जब हमारा भारतीय रुपया थोड़ा कमज़ोर है तो इससे किसको फ़ायदा हो रहा है? जो लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, आप जब एक्सपोर्ट करते हैं आपको पेमेंट डॉलर में आती है, तो हमारे पास वो डॉलर को जब हम यहाँ के कन्वर्ट करते हैं तो हमें ज़्यादा पैसा मिल जाता है। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आया होगा कि जब आप डीवैल्यूएट करते हैं तो आप अपनी करेंसी को जानबूझकर कमज़ोर करते हैं। चाइना जापान ने किया, युआन और येन में ये हुआ। तो कमज़ोर करने से क्या हुआ कि डॉलर के अगेंस्ट जब डॉलर की पेमेंट चाइना में और जापान में आने लगी तो उनके ज़्यादा पैसा येन में और युआन में मिलने लगा। मैं उम्मीद करता हूँ शुक्ला जी आपको समझ आया होगा कि ये कैसे सारा खेल चलता है। करेंसी का कमज़ोर होने का सबसे ज्यादा फायदा केवल और केवल एक्सपोर्टर्स को होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं।
3: जितने निर्यातक होते हैं उनको सबसे बड़ा फायदा होता है, और उनकी चीजें चूंकि विदेशी बाजार में सस्ती होती हैं तो उनकी मांग बढ़ जाती है, जिससे हमारे देश का निर्यात या किसी भी देश का निर्यात बढ़ता है। महाराष्ट्र से गुरुनाथ हमारे साथ मौजूद है। जी गुरुनाथ, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए।
4: जी सर, नमस्कार।
3: नमस्कार जी, बोलिए।
4: हाँ सर, शरद सर को भी
2: नमस्कार। गुरुनाथ जी पूछिए।
4: सर मेरा क्वेश्चन है सर, ये जो रिजर्व आरबीआई ने जो गवर्नमेंट को जो सरकार को जो लाभांश दिया जाता है
2: जी, डिविडेंड,
4: सर ये कितने साल में दिया जाता है? क्या सरकार डिमांड के बाद ही रिजर्व बैंक देती है कि अपने आप ऑफर करके देती है, ये बताइए। और दूसरा सवाल मिला है ये कि सर, ये जो एआई के वजह से
2: जी
4: जो लोगों की नौकरियां आजकल, मतलब जब वैसे ये हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या तो बनी ही रहती है
2: जी,
4: तो क्या भविष्य में हमारे जो मल्टीनेशनल कंपनी में तो हो ही रहा है, हमारे यहाँ की कंपनियां भी मतलब ऐसे जॉब कॉस्ट कटिंग का कर सकती है? और क्या इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा इसमें, मतलब गवर्नमेंट क्या डिसीजन इसमें इंटरफेयर कर सकती है कि जो प्राइवेट कंपनियां होती है?
2: देखिए, चलिए गुरुनाथ जी आपके सवाल समझ आ गए। आपने पूछा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब डिविडेंड देता है सरकार को, अभी 2,87,000 करोड़ के डिविडेंड की बात हुई, तो वो आरबीआई को जो मुनाफा होता है उसमें से देता है, क्योंकि सरकार ही सबसे बड़ा और केवल शेयर होल्डर है, तो वो अपने आप ही जब वो प्रॉफिट निकालते हैं तो स्वतः अपने आधार पर आरबीआई एक स्वतंत्र संस्था है। दूसरा आपने पूछा एआई की नौकरी आगे जाएंगी, देखिए जो रेपिटेटिव जॉब्स होंगी एआई वहां पर खतरा बना हुआ है पूरे विश्व के लिए। भारत सरकार इसमें जो एआई के प्रोग्राम चलाती है, मुझे लगता है युवा को आज क्या करना चाहिए, थोड़ा सा अपना रीस्किलिंग और अपस्किलिंग पर ध्यान देना चाहिए, वरना आने वाले कुछ सालों में जो युवा अपने रीस्किलिंग और अपस्किलिंग पर ध्यान नहीं देंगे, कौशल विकास पर ध्यान नहीं देंगे, उनकी थोड़ी सी नौकरी अगर रेपिटेटिव जॉब है, आप रोज एक ही काम करते हैं, वो एआई जरूर वहां पर खतरा आगे बन के आ सकता है। पर इसको रोक पाना ज्यादा जरूरी बात है, क्या सरकार इसको रोक पाएगी? मुझे लगता है एक सीमा के बाद टेक्नोलॉजी को रोक पाना बहुत कठिन हो जाता है।
0: बिफोर वी टेक द नेक्स्ट कॉल, लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट हाउ द यूएस मार्केट्स बिहेव्ड यस्टरडे। वॉल स्ट्रीट एंडेड ऑन अ पॉजिटिव नोट यस्टरडे, सपोर्टेड बाय ऑप्टिमिज्म ओवर ईरान यूएसपी स्टॉक्स एंड अ स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स सीजन। द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज क्लाइम्ड नियरली 0.6% टू क्लोज एट अ रिकॉर्ड हाई ऑफ 50,580। द एसएनपी 500 एडवांस्ड ऑलमोस्ट 0.4% to close at 7,473, and the Nasdaq Composite Index added 0.2% to close at 26,344. For the week, the Dow surged 2.1%, the S&P 500 rose nearly 0.9%, and the Nasdaq gained almost 0.5%. Meanwhile, in the United States, Kevin Warsh has taken oath of office as chairman of the U.S. Federal Reserve Board of Governors, succeeding Jerome Powell, who had held the position since 2018. And let's take the next call coming in from Delhi. Sanjeev is online with us. Sanjeev, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
3: Sanjeev, agar aapko awaaz aa rahi hai to apna prashn poochiye.
5: Shivan ji, namaskar. Ke saath sawal ye hai ki 84 days se ye jo ईरान की वॉर ब्रोकन है
2: जी,
5: हमें शील्ड मिली हुई है पीएम साहब की तरफ से पेट्रोल हाइक के ऊपर, जो कि बहुत मिनिमम सा हुआ है
2: जी।
5: गवर्नमेंट चिंता है और अपने से ज्यादा देश की चिंता है कि ये कितनी देर तक मैनेज कर लगे, जो कि हमें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 20-25 रुपए रेट का इजाफा होना चाहिए टू मेंटेन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ माई कंट्री, और कितनी देर ये कैसे हमें शील्ड दे रहे हैं?
2: पहले तो संजीव जी की मैं प्रशंसा

0: करना चाहूंगा पूरे संजीव जी देशभक्त हैं और इस समस्या को समझते हैं। देखिए सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और 76वें दिन ये कीमत बढ़ाई गई और अभी भी अंडर रिकवरी है, तो गवर्नमेंट ने कुशनिंग की हुई है। और कब तक है ये सब संजीव निर्भर करेगा कि क्रूड ऑयल कहाँ तक जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कब तक बंद रहता है, ईरान और ये जो येस एंड नो का गेम चल रहा है ईरान और यूएस के बीच, कभी हाँ कभी ना कभी समझौता हो जाएगा, बहुत ही अनिश्चित परिस्थिति संजीव जी। अगर मैं संक्षेप में बोलूँ तो बहुत अनिश्चित परिस्थिति है, एनीबडीज गैस के कब होगा, बल्कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री हर घंटे कीमतों पर नजर रखे हुए। तो मुझे लगता है इसका जवाब तो डोनाल्ड ट्रंप दे सकते हैं कि ये कब तक चलेगा, कब तक होगा। मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी शांत हो और जल्दी क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे आ जाए।
1: जी, एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑयल प्राइसेस, लेट्स सी हाउ क्रूड ऑयल प्राइसेस बिहेव ड्यूरिंग द वीक। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइंड शार्पली ओवर द वीक ऑन ऑप्टिमिज्म दैट ट्रैफिक थ्रू द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वुड रिटर्न टू नॉर्मल in the near term if a peace deal is reached. Oil prices rose over 3% during yesterday's session but pared gains by the close. Brent crude July futures settled over 0.9% at $103.54 per barrel, while West Texas Intermediate July futures added nearly 0.3% to end at $96.60 per barrel. On a weekly basis, Brent declined 5.5% while WTI fell by 8.4%. And let's take the call coming from Keshav from Delhi. Keshav, we are running out of time. Very briefly, please ask your question.
2: Hello, Namaskar ji.
0: Namaskar.
2: Sir, main ye puchna chahta hu agar sarkar ne ye apna petrol aur dusri cheezon mein rate badhaye hain aur ye fir ghata bhi dete hain aur jo market mein jo dusre dukandar hai apna rate bada dete hain par wo ghatate nahi, dukandaron ko bhi to ghatana chahiye, iske liye kya karna?
0: Bilkul Keshav, ghatana chahiye. Aur aapko agar aisa koi janboojh ke shararat karta milta hai to uske liye national consumer helpline pe aap shikayat kar sakte hain. Abhi sankshep mein to yahi bata paunga, agli baar kariyega isko aur khol ke zara baat karenge kaun wo dukandar hai jo aise karta hai.
3: Aur sarkar ne bahut sare is tarike ke upay kiye hain ki is tarike ki jo ghatnaen hain wo kam se kam ho ya seemit ho aur is pe sarkar ki khaas taur pe nazar bhi kafi behtar rehti hai. Sharad filhal karyakram mein aane aur हमारे श्रोताओं को इतनी सरल भाषा में इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: It was my pleasure, thank you.
3: और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
1: Prime Minister Narendra Modi distributes over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments, says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Indian equities wrap up the week with gains and global crude oil prices tumbled sharply over the week. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at the same time. And do remember, it's going to be another call-in program. So do remember to join us at 6:30 tomorrow. Till then, from the entire team, goodbye. Namaskar.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से

0: उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। नवनियुक्त 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसी कार्यक्रम में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
1: विकसित भारत 2047 जब उस गोल उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रिट्रेन करें, रिस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
0: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ती कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानो भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिनों के अंदर विस्तृत कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने आरोपियों की गिरफ्तारी, जांच, पीड़िता की सुरक्षा, परामर्श और पुनर्वास उपायों सहित तत्काल सख्त और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को 27 मई तक केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटवर्ती इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi and US Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the inter-US Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on the Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi this afternoon. Mr. Modi said in a social media post that India and the US will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio briefed Mr. Modi on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Rubio shared US's perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy.

0: சில நொடிகளில் தொடரும் செய்தி அறிக்கை. டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகேஷ் குமார் பல். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। श्री रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान बनाए रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में नवनियुक्त 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
2: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रिट्रेन

0: करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
1: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। श्री गोयल ने कहा कि 33,600 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन वाली भारत औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किस्त के रूप में 527 करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ एक वर्चुअल बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बीमारियों की निगरानी में सुधार करने और निवारक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए राज्य को पूर्ण समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। फाइनल मुकाबले के 60 किलोग्राम वर्ग में सूरज वशिष्ठ को कजाकिस्तान के एबेक एदबेकोव से 4-0 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निपुणिका शाहिद। Prime Minister Narendra Modi and U.S. Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-U.S. Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on the Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi this afternoon. Mr. Modi said in a social media post that India and the U.S. will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajay Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio briefed Mr. Modi on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Rubio shared U.S. perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of the citizens. He made these remarks while addressing the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. The Prime Minister highlighted the world is eager to be a part of India's growth journey. He said that the country is also partnering with the various countries of the world aimed at providing opportunities, employment and global exposure to the youth of the nation.
3: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: திரைவாணையில் பாரதிய சேனா கேட்டீர்கள். தொடரும் செய்தி தொகுப்புகள் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சே சமாச்சார் சந்தியா கே சாத் மே முகேஷ் குமார் பல். मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं।

0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे। हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग

0: देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
2: विकसित भारत 2047, जब उस गोल उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रिट्रेन करें, रिस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
1: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से

0: 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल किंयुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जाँच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानाउ से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. US Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States approach towards Indo-Pacific region. Defence Minister Rajnath Singh asserts the country is becoming self-reliant in defence manufacturing, inaugurates artillery shell manufacturing plant at Shirdi in Maharashtra. Centre asks Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of next month for strengthening defence infrastructure. 90 people killed in a coal mine explosion in China. And Indian grapplers Suraj Vashishth and Sagar Singh clinch silver medals at Asian Under 23 Wrestling Championships in Vietnam. Prime Minister Narendra Modi and US Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi this afternoon. Mr. Modi said in a social media post that India and the US will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Dobhal were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio briefed Mr. Modi on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Rubio shared the US perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. He requested Secretary Rubio to convey his warm greetings to US President Donald Trump and said he looked forward to their

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अल्पी कुमारी।
1: और मैं संजय किशोर।
0: विज्ञान भारती में हम विज्ञान, तकनीक, शोध, नवाचार और समाज पर उनके प्रभाव से जुड़े विषयों को आप तक पहुंचाते हैं।
1: आज के अंक में हम चर्चा करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, विज्ञान और तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका पर।
0: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और सुपर कंप्यूटर,
1: दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण की नई तकनीक,
0: विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और बिहार में प्रवासी पक्षियों की गणना, खरीफ फसलों के नई किस्में एवं जैविक उर्वरक,
1: साथ ही सुनेंगे विज्ञान जगत की बातें, मई माह में जन्मे और दिवंगत महान वैज्ञानिकों के योगदान तथा मई माह के प्रमुख विज्ञान दिवस।

गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा इन 9 दशकों में आकाशवाणी ने केवल समाचार और मनोरंजन ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक के जन जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत होती है वर्ष 1927 से, किंतु वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। बाद में 1957 में इसे आकाशवाणी नाम मिला। स्वतंत्रता के समय देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे और इनकी पहुंच लगभग 11% आबादी तक थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वर्तमान में आकाशवाणी के 470 से भी अधिक केंद्र कार्यरत हैं, जो देश के लगभग 92% भौगोलिक सीमा और 99% जनसंख्या तक पहुंच रखते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है। यह आंकड़ा केवल प्रसारण क्षमता का संकेत नहीं देता बल्कि यह दर्शाता है कि आकाशवाणी ने भारत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विज्ञान और तकनीक की जानकारी पहुँचाने में

0: कितनी प्रभावी भूमिका निभाई है। आज FM, डिजिटल रेडियो और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से विज्ञान आधारित कार्यक्रम नई पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल प्रसारण की यात्रा नहीं बल्कि ज्ञान, शिक्षा और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार की गौरव गाथा है। स्वतंत्रता के बाद देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। कम उत्पादन, पारंपरिक खेती और वैज्ञानिक जानकारी के अभाव के कारण किसान आर्थिक कठिनाइयों में थे। ऐसे समय में आकाशवाणी किसानों का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मार्गदर्शक बनकर सामने आया। कोविड-19 महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। वहीं लोग वैक्सीन से डर भी रहे थे, कहीं घरेलू उपचारों को वैज्ञानिक सत्य मान लिया गया था। ऐसे समय में आकाशवाणी ने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से प्रामाणिक जानकारियां प्रसारित की। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, वहां रेडियो सबसे विश्वसनीय माध्यम बना। बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा और समुद्री तूफान जैसे आपदाएं हर वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं। ओडिशा चक्रवात, बिहार बाढ़, असम की बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाओं के दौरान रेडियो जीवन रक्षक माध्यम के रूप में सामने आया। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में आकाशवाणी ने स्वयं को तकनीकी रूप से आधुनिक भी बनाया है। विज्ञान एवं तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका के बारे में आइए जानते हैं ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर VK श्रीवास्तव से।
1: 1990-92 के बीच में ICMR ने आकाशवाणी के साथ मिलकर के एक रेडियो डेट प्रोग्राम किया। डेट मतलब ड्रग, अल्कोहल, टोबैको, एजुकेशन। ये ऑल इंडिया रेडियो के 84 स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ प्रोग्राम, 30 एपिसोड का, 16 लैंग्वेजेस में। तो ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। सबसे ज्यादा इसका फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। इसका इवेल्युएशन हम सिर्फ दो जगह कर पाए, कर्नाटक और गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में। उससे पता चलता था 4-6% लोगों में, कहीं 4% कहीं 6% लोगों ने इस प्रोग्राम को सुनने के बाद में इन बुरी आदतों से छुटकारा पाया। एक सबसे और अच्छी बात थी, ये अपने से छोटे बच्चों को सिखाते थे, उनमें बुराइयां बताते थे, उनको शिक्षित करते थे। दो तरह फायदा हुआ इस प्रोग्राम से। तो हम तो चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम और होते रहने चाहिए। सन 86 के आसपास भारतवर्ष में HIV का दौर शुरू हुआ। सन 88 में फिर मैंने HIV पर एक नेशनल फीचर, आधे घंटे का फीचर किया। उसमें हिंदुस्तान भर में जा जाकर जो उस समय के अपने एक्सपर्ट थे, मुंबई में डॉक्टर गिलाडा थे, चेन्नई में डॉक्टर सोलोमन थे, और यहाँ के उनकी पेशेंट्स के इंटरव्यू किए, यहाँ होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, एलोपैथिक एक्सपर्ट्स, WHO, इन सबके से इंटरव्यू करके इनकी रिकॉर्डिंग करके 30 मिनट का प्रोग्राम एक फीचर किया।
0: विज्ञान जगत में किए गए अपने योगदान को याद करते हुए आकाशवाणी में कार्यरत पूर्व ADG मनोज पटेरिया ने अपने अनुभव इस तरह साझा किए।
2: मैंने नाटक भी लिखे विज्ञान पर जो ब्रॉडकास्ट हुए। समय नाम का नाटक था जो टाइम मशीन के ऊपर था, एक प्रदूषण के ऊपर था, जिसमें ये था कि किस प्रकार से प्रदूषण आने वाले समय में मुश्किलात पैदा कर सकता है।
3: अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और नवीन अनुसंधानों की। संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एनर्जी और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। IIT पटना के निदेशक डॉक्टर TN सिंह,
4: यहाँ पर 3 शोध के एक नए आयाम खुले हैं जिनको हम इनक्यूबेशन सेंटर कहते हैं, TBI, TIH। इन तीनों का मैंडेट अलग अलग है और इसमें एक नए नवाचार और नए तरह की शोध करने वाले विद्यार्थियों, न केवल IIT पटना के लेकिन बिहार और सुदूर राज्यों से भी आए हुए विद्यार्थी इसमें काम करते हैं। नई एक शोध हमारे यहाँ के एक शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर किया है कि डिमेंशिया की बीमारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है और उसके तहत उनका पेटेंट भी ग्रांट हुआ है। इस तरह से हमारे यहाँ 100 से ऊपर के पेटेंट फाइल हुए हैं और बहुत सारे ग्रांट भी हुए हैं। अभी भाषिनी प्रोजेक्ट चल रहा है जो अंतर इंस्टीट्यूशनल कार्यक्रम है, जिसमें कि कुछ IIT, कुछ NIT, कुछ यूनिवर्सिटी सभी मिलकर के ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें एक भाषा में यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सुनने वाला अपनी लोकल भाषा में उसको समझ सके और उसको सुन सके और प्रश्न भी कर सके अपनी भाषा में, तो वक्ता के पास उसकी भाषा में जिसमें वो बोल रहा है उसको वो प्रश्न का उत्तर देगा। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही सफल प्रयोग है यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए और पहली बार IIT पटना से विदेश में बैटरी गई है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। बिहार में पहला सुपर कंप्यूटर IIT पटना के प्रांगण में स्थित है। हमारे यहाँ जो सुपर कंप्यूटर है ये ब्रह्मास्त्र का

0: हम बोलते हैं, ये सुपर कंप्यूटर की टेराबाइट में इसकी स्पीड हो। टेराबाइट बहुत ही फास्ट स्पीड, त्वरित काम को निष्पादित करने का इसके अंदर जो है काम है। एआई के क्षेत्र में काफी यहाँ काम हो रहा है। केवल हम भाषा तक ही नहीं, हम एआई के क्षेत्र में फॉर्मेशन तक के अंदर किस तरह से 5G, 6G को स्पीड अप किया जाए उसके लिए भी, और क्वांटम में भी यहाँ का फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विभाग जो है वो राष्ट्रीय स्तर के जो मिशन है क्वांटम का उसके साथ जुड़े हुए हैं।
1: दुर्लभ खनिज यानी रेयर मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स, ये ऐसे खनिज हैं जो स्वच्छ ऊर्जा, विद्युत, वाहन, रक्षा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उन्नत विनिर्माण उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर 17 खनिजों को दुर्लभ खनिज का दर्जा दिया गया है, जिनकी मांग तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि विश्व ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी ट्रांजिशन और हरित प्रौद्योगिकी की ओर अग्रसर है। भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या ANRF देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए धन देने, बढ़ावा देने और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए अनिवार्य सर्वोच्च निकाय है। ANRF ने IIT पटना के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत के परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक से दुर्लभ

0: अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो हम लोग उनको बोलते हैं कि प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी रिसोर्स, तो वो उसके जियोलॉजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है हमारे पास सेकेंडरी रिसोर्स होता है। सेकेंडरी रिसोर्स ये होता है कि जैसे ई वर्ज्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, जो भी हम लोग डे टू डे यूज करते हैं, तो सारा चीज एक यूजुअल लाइफ पीरियड के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है। और ऑब्सोलीट हो जाने के बाद क्या है कि उसमें उससे हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से उसको हम लोग निष्कासित करते हैं। निष्कासित करने के लिए आपके पास तरीका जो होता है, टेक्निकल तरीका, वो बोलते हैं कि पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड बायोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं कि आपको हीट ट्रीटमेंट देते हैं, और उससे क्या है कि अगर आप मेटेरियल प्राइमरी सोर्स पे अगर कोई मटेरियल है, प्लास्टिक्स है, तो उसको जलाया जाता है, तो उससे प्रदूषण हो सकता है। तो इसलिए दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके पास हाइड्रोमेटलर्जी होता है। हाइड्रोमेटलर्जी में जनरली लोग क्या करते हैं कि एसिड और अल्काली यूज करते हैं। तो वो जो एसिड और अल्काली होता है, वो जनरली कन्वेंशनली लोग उसका स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्काली यूज करते हैं। तो उसके बदले में अगर कुछ ऑल्टरनेटिव्स ये है कि अगर आप कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड यूज करें, और नाउडेज क्या है कि नोबेल जो टेक्निक आया है उसको बोलते हैं कि हम लोग डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट, उससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हमें एनआरएफ से जो रिसर्च ग्रांट मिला है, इससे हम लोग करें सेकेंडरी रिसोर्स परमानेंट मैग्नेट। उससे परमानेंट मैग्नेट जनरली आप देखेंगे व्हीकल्स में यूज होता है, जनरली देखेंगे विंड मिल में यूज होता है। सो परमानेंट मैग्नेट जब वो ऑब्सोलीट हो जाता है उस परमानेंट मैग्नेट से, और मेजोरिटी ऑफ द सोर्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट आपका चाइना है, तो वो सब आप एक्सपोर्ट सब बंद कर दिया। जो डेवलप कंट्रीज है जिनके पास क्रिटिकल मिनरल का मेजोरिटी ऑफ द रिजर्व्स है, वो लोग इसका दुर्लभ खनिज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। जो अगर स्वावलंबी बनना है भारत को, तो इसलिए क्या है कि हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से ये सब पदार्थ और दुर्लभ खनिज निष्कासित करना है। तो इसी संदर्भ में ये जो परमानेंट मैग्नेट से क्रिटिकल मिनरल निष्कासित करना डीप यूटेक सॉल्वेंट लेके, ये एक हमारा पहल है जिसमें हम लोग काफी शोध कर चुके हैं, और आगे शोध को हम लोग स्केल अप करेंगे।
1: और अब हम जानेंगे प्रवासी पक्षी के बारे में। प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों किलोमीटर का सफर तय करके हमारे देश, हमारे शहर और हमारे इर्द गिर्द पहुंचते हैं, और इन्हीं पक्षियों के लिए 9 मई 2026 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था हर पक्षी महत्वपूर्ण है, आपका नजरिया मायने रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पक्षी दो प्रमुख वजहों से प्रवास करते हैं, भोजन और घोंसले की तलाश में ये पूरी दुनिया में प्रवास करते हैं। वर्ल्ड लाइफ के अनुसार विश्व के पक्षियों की 40% प्रजातियां अब घट रही हैं। प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उनकी घटती संख्या जल की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति कमजोर सहनशीलता का कारण बन रही है। भारत में हर साल 370 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। बिहार में 70 से अधिक प्रवासी पक्षियों सहित कुल 260 से ज्यादा प्रजातियों के 10,000 से अधिक पक्षियों की गणना की गई है। आप ई बर्ड बिहार पर जाकर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पटना, भागलपुर या और भी जो क्षेत्र हैं, उनमें हाल ही में देखे गए पक्षियों की सूची और चेकलिस्ट को देख सकते हैं। बिहार में प्रवासी पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर देव नारायण चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर।
2: पिछले कई सालों से बिहार का जो वन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो और बॉम्बे की संस्था है बीएनएचएस, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों के प्रयास से पक्षियों की गणना शुरू हुई है। 2022 से इसकी शुरुआत हुई और ये 26 लगभग 5 गणना हो चुकी, और इससे काफी अच्छे परिणाम आए हैं। हम लोगों ने बिहार के 3800 जिलों में जितने भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स है जहाँ पर इन पक्षियों का वास होता है, ये प्रवासी पक्षी जहाँ से आकर के पनाह लेते हैं, वहाँ पर इसकी गिनती शुरू हुई। और इसमें जो भी पक्षी विशेषज्ञ थे, जो बर्डर थे, जो ट्रेनर थे, उन लोगों को इसमें लगाया गया, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेटर की बहाली हुई जो एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं। इससे अच्छे परिणाम आए, तो धीरे धीरे हर साल कुछ कुछ वेटलैंड की संख्या भी बढ़ती चली गई, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें देखा गया कि एक अच्छा डाटा तैयार हो गया, और

0: BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों के प्रयास से पक्षियों की गणना शुरू हुई है। 2022 से इसकी शुरुआत हुई और ये 26 लगभग 5 गणना हो चुकी और इससे काफी अच्छे परिणाम आए हैं। हम लोगों ने बिहार के 3800 जिलों में जितने भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड है जहाँ पर इन पक्षियों का वास होता है, ये प्रवासी पक्षी जहाँ से आकर के पनाह लेते हैं, वहाँ पर इसकी गिनती शुरू हुई और इसमें जो भी पक्षी विशेषज्ञ थे, जो बर्डर थे, जो ट्रेनर थे, उन लोगों को इसमें लगाया गया और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेटर की बहाली हुई जो एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं। इससे अच्छे परिणाम आए तो धीरे धीरे हर साल कुछ कुछ वेटलैंड की संख्या भी बढ़ती चली गई, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें देखा गया कि एक अच्छा डाटा तैयार हो गया और आने वाले दिनों में बिहार के पक्षियों पर एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। जो इसके पहले 2012 में ही एक बुक पब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा, बर्ड्स ऑफ बिहार, उसका जो इन्फॉर्मेशन था उससे कहीं ज्यादा इस रिपोर्ट के बाद जो ये छपेगा तो आने वाले दिनों में जो एकेडमिक्स के फील्ड में ये एक अच्छी जानकारी साबित होगी।
1: और अब जानते हैं विज्ञान जगत की नवीनतम घटनाओं के बारे में। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाला सुपर एल नीनो 1950 के बाद सबसे शक्तिशाली में से एक हो सकता है जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह कई क्षेत्रों में बाढ़, सूखा, हीट वेव और जंगलों में आग जैसी घटनाओं को बढ़ा सकता है। जलवायु परिवर्तन इसकी प्रकृति को और अधिक अनिश्चित बना रहा है। सुपर एल नीनो का मतलब समुद्र के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की असामान्य बढ़ोतरी से है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। खासकर दक्षिण एशिया पर इसका अधिक असर पड़ता है।
2: भारत के असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार सैटेलाइट ट्रैक की गई गंगा सॉफ्ट शेल कछुए को छोड़कर संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। यह संवेदनशील मीठे पानी की प्रजाति का कछुआ है जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके व्यवहार, प्रवास और पर्यावरणीय खतरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए ट्रैक की जा रही है। यह पहल वैज्ञानिकों को इस जलीय सरीसृप प्रजाति के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इस प्रजाति को असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। और अब स्वाद और सेहत से भरपूर बिहार की पहचान मखाना के बारे में जानते हैं। सुपर फूड बन चुका मखाना अब वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना की नई प्रजातियों और उत्पादन तकनीकों पर कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में ICAR राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार।
3: कोरोना काल के बाद से जब स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता काफी तेजी से बढ़ी है तो मखाना में पाए जाने वाले जितने औषधीय गुण है, इसमें पाई जाने वाली जितनी पौष्टिकताएं हैं, तो इन गुणों के प्रति, इन स्वास्थ्य लाभों के प्रति बहुत तेजी से दुनिया भर में जागरूकता हुई है। इसमें मिनरल्स काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम। पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे न्यूट्रिशन के लिए, जैसे आयरन, जिंक इत्यादि बहुत अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ये जीरो फैट फूड इसे मानते हैं। इसमें फैट की मात्रा बहुत ही कम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें बहुत कम होता है, मधुमेह के जो मरीज हैं वो भी बहुत सुगम से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, मोटापे की समस्या से जो ग्रसित है वो भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि फैट इसमें बहुत कम है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के माध्यम से भी एक नई प्रजाति अभी विकसित की जा रही है और मेरा मानना है कि अगले एक वर्ष में ये वैरायटी आ जाएगी जिसकी उत्पादन क्षमता यहां से करीब 15-20% और ज्यादा होगी। और इसके अतिरिक्त कांटे रहित मखाना के प्रभेदों के विकास पर भी अभी चर्चा हो रही है।
1: हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने की बात कही है ताकि खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा को प्राप्त किया जा सके। बिहार के 13 जिलों में जैविक खेती की जा रही है। कृषि विज्ञान में खरीफ खाद्यान्न की नई प्रजाति के विकास एवं ब्लू अलगी जैविक उर्वरकों के उपयोग के संबंध में बता रहे हैं डॉक्टर दिव्यांशु शेखर, कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा।
4: जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को प्राथमिकता में रखा है कि हम रासायनिक उर्वरकों से हटकर प्राकृतिक या जैविक उर्वरकों की तरफ बढ़े, जिससे कि न कि हमारा फसल की उत्पादकता बनी रहे, साथ में ही उसकी गुणवत्ता में भी कोई ह्रास न हो। खास तौर पे धान की फसल में जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको हम अजोला कहते हैं, उसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है वो 10-20% तक हम उसके द्वारा कम कर सकते हैं। साथ में ही इसके प्रयोग करने से हमारे भूमि में कार्बनिक तत्वों की भी मात्रा बढ़ती है और साथ साथ जो खरपतवार होते हैं उनकी भी संख्या कम होती है।
2: और अब अंतरिक्ष की बात। हाल ही में विश्व का पहला ऑप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च

0: किया गया। यह एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के बारे में हमसे बात की भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुअनंतपुरम के कुलपति प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने।
1: दो चीज होता है, देखिए आप जो 100 साल से हम लोग कोडाईकनाल से सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं, ये जरूरी इसीलिए है कि वो हमारे सबसे नजदीकी तारे है, उसका चुंबक क्षेत्र का कुछ परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन का एक 11 साल का एक हम बोलते हैं सोलर साइकिल जैसा है। तो कभी कभी उसमें चुंबक क्षेत्र थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा कम होता है। एंड ये जो बढ़ना और कमना का जो ऑसिलेटन पैटर्न जो है, उसको स्टडी करने के लिए एक डायनमो मैकेनिज्म को हम लोग मैथमेटिकली अब इस्तेमाल करते हैं। सोलर डायनमो एक थ्योरी है जो हमको समझने के लिए ये करते हैं कि क्यों ऐसा सूर्य में चुंबक क्षेत्र 11 साल का एक पीरियोडिसिटी क्यों रहता है। बट ये तो एक थ्योरी हो गया, बट थ्योरी को तो मैच करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए। ऑब्जर्वेशन जितना लंबा होगा तभी इतना अच्छा है। इसीलिए ये कोडाईकनाल में ऑब्जर्वेशन हम लोग 1904 साल से चालू किया। उसी जमाना में तो फोटोग्राफिक प्लेट होता था, फिल्म होता था, हमने वो पूरा जो आर्काइव है उसको पूरा डिजिटाइज किया है। आजकल का जमाना में तो कोई हाथ से तो कुछ करते नहीं, आपको इमेज होना चाहिए जो डिजिटल मोड है। एक्चुअली पुराना आर्काइव है उसको डिजिटाइजेशन करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। तो ये 100 साल का पूरा डेटा डिजिटाइज करने के बाद हमने अभी अध्ययन किया कि ये 11 ईयर साइकिल कैसा होता है। कभी कभी एक साइकिल थोड़ा बड़ा होता है, कभी थोड़ा छोटा होता है। जब बड़ा होगा उसमें सोलर जो तूफान वो और ज्यादा होगा, जब थोड़ा चुंबक क्षेत्र थोड़ा कम होगा तो वो भी जानकारी होना चाहिए। एक तो है कि अभी हाल ही में ये तूफान आने वाला है या नहीं आने वाला, ये जानकारी। और एक है कि पहले ऐसा तूफान होता था कि नहीं होता था। अभी सन जो स्टार वो मिडिल एज में है, वो जब बड़ा हो जाएगा, वो रेड जायंट हो जाएगा, हम तो बच नहीं पाएंगे। अभी मिलियनियर में नहीं होने वाला है तो अभी सोचने का नहीं है, बट ये सब जानकारी होना चाहिए।
2: मई का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद खास है। कई महानतम वैज्ञानिकों का जन्म हुआ जिन्होंने भौतिकी, चिकित्सा और रसायन विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस महीने देश के कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञों का जन्म हुआ जिन्होंने न केवल भारत में आधुनिक विज्ञान और परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। डॉक्टर राजा रमन्ना, आप भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार कहे जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1925 को तुमकुर कर्नाटक में हुआ। के आर रामनाथन, आप भारत के मौसम विज्ञान और ओजोन अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1893 को पलक्कड़ केरल में हुआ। हरीश चंद्र, जो कि गणित और भौतिकी के महान सेतु कहे जाते हैं, आपका जन्म हुआ 11 मई 1923 को कानपुर उत्तर प्रदेश में। आप महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सहायक भी रहे। आपने लाई ग्रुप्स और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में क्रांतिकारी सिद्धांत दिए जिन पर आज भी क्वांटम मैकेनिक्स और आधुनिक गणित टिकी हुई है। हमारे अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भटकर, आप भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। आपका जन्म 11 मई 1946 को मोरंबा महाराष्ट्र में हुआ। आपके नेतृत्व में सीडेक ने साल 1991 में भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया। आगे नाम आता है प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव का, जिनका जन्म 3 मई 1961 को हुआ था। आप भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे। पूरी दुनिया जब सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रही थी, तब भारत की वैज्ञानिक लड़ाई का नेतृत्व करने वाले मुख्य चेहरों में डॉक्टर भार्गव का नाम सबसे आगे था। और अब हम जानेंगे मई महीने में दुनिया ने विज्ञान जगत के कुछ बेहद प्रतिष्ठित चेहरों को खोया है। डॉक्टर मोनिका मोंटे फाल्कोन, आपका निधन 14 मई 2026 को हुआ। आपने समुद्री पारिस्थितिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर विलियम चार्ल्स लिविंगस्टन, आपका निधन 2 मई 2026 को 98 वर्ष की आयु में हुआ। आपने सौर खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया।
0: आज विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को याद करते हुए हमारे सुधी श्रोताओं ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार।

0: शब्द ब्रह्म के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए देश के जन जन की आवाज एवं सूचना क्रांति के उद्घोष के प्रतीक आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के गौरवमयी प्रसित्व के 90 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण आकाशवाणी परिवार और इसे करोड़ों श्रोताओं को मैं प्रेम कुमार अध्यक्ष बिहार विधानसभा हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। 8 जून 1936 को अपनी औपचारिक यात्रा शुरू करने वाला आकाशवाणी आज केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास का जीवंत साक्षी है। स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत का निर्माण तक आकाशवाणी राष्ट्र सूत्र में पिरोने का अभूतपूर्व कार्य किया है। संकट और आपदा के समय इसकी प्रमाणिक खबरों ने हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है, जिससे इसकी विश्वसनीयता आज भी शून्य है। जन जागृति और राष्ट्र निर्माण सुदूर गांव, खेतों, खलिहानों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाने में इस माध्यम की भूमिका रहती है। कृषि सुधारों से लेकर मन की बात जैसे संवादों के माध्यम से इसने जन जागृति को एक नई दिशा दी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक सरल भाषा में पहुंचाकर आकाशवाणी ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के संकल्प को सिद्ध किया है। मैं इस अवसर पर आकाशवाणी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि अद्वितीय संस्थान आगे की अपनी स्पष्टता, राजभक्ति और सेवा से देश को आलोकित करता रहेगा। रेडियो की वह मधुर पुकार आज भी दिलों में बसती है। आकाशवाणी की हर धुन भारत की आत्मा सी लगती है।
1: पंचायती राज्य मंत्री बिहार सरकार दीपक प्रकाश।
2: मैं दीपक प्रकाश, मंत्री पंचायती राज विभाग, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबों के सामाजिक जीवन में, देश के राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और साथ ही साथ जो हमारा देश का इतिहास है, उन सबों में आकाशवाणी का एक विशेष रोल रहा है। आजादी की लड़ाई हो या विभिन्न कालखंडों में जन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का काम हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने कमेंडेबल काम किया है। हम सबों के बचपन की यादें भी आकाशवाणी से जुड़ी हैं। क्रिकेट की कमेंट्री आकाशवाणी पे सुननी हो, पुराने गाने आकाशवाणी पे सुनने हो, या सभी विद्यार्थियों के लिए टॉक शोज के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने काम किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आकाशवाणी ने अपने को बदलने का भी काम किया है। एनालॉग से डिजिटल तक का सफर आकाशवाणी का विशेष रूप से कमेंडेबल है। आज के इस चकाचौंध और दिखावटी मीडिया के दौर में आकाशवाणी का एक विशेष स्थान है, जो कि हमें अपने जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आकाशवाणी का विशेष रूप से हम धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहेंगे कि आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबों के बीच किया जाने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। एक बार पुनः आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देते हुए, और आकाशवाणी हम लोगों के बीच जीवन का और हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आज के युवा आकाशवाणी से जुड़े, इस बात की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: मेरा नाम नीलम चौधरी है, मैं एक्स IAS ऑफिसर हूं और एक कथक डांसर भी हूं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आकाशवाणी का नाम आते ही एक स्पंदन सा होने लगता है और याद आता है अपने स्टूडेंट लाइफ का वो स्टडी टेबल जहां हमेशा एक ट्रांजिस्टर रखा रहता था। चूंकि मैं म्यूजिक की फील्ड से हूं, इसीलिए म्यूजिक के लगभग सब कार्यक्रम मैं आकाशवाणी का सुना करती थी, चाहे वो शास्त्रीय संगीत का हो या फिल्मी गानों का हो, गैर फिल्मी गानों का हो, भजन हो, लोक संगीत हो, मैं सब कार्यक्रम सुनती थी और वो सारे गाने मुझे कॉन्सेंट्रेशन देते थे और मुझे पढ़ाई अच्छी मेरी होती थी। मैंने महसूस किया है कि आकाशवाणी ने समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों को अपने कार्यक्रम में इनकॉर्पोरेट किया है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र से हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो, तकनीकी क्षेत्र से हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, लगभग सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इसने कार्यक्रम बनाया है। बच्चों के लिए हो, शाम में 7:30 बजे अनंत सिंह का न्यूज होता था, वो तो बहुत ही लोकप्रिय था और बहुत स्पष्ट और बहुत अनबायस्ड कार्यक्रम हुआ करता था। उसके अलावा नाटक में हवा महल और लोहा सिंह का नाटक हम लोग बहुत इंतजार करते थे और सुनना करते थे। तो ये रिचनेस आकाशवाणी में शुरू से रहा है। आज भी हर वर्ग के लिए कार्यक्रम बनाना, उसे सक्सेसफुली प्रसारित करना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आकाशवाणी की और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से 90 वर्षों का सफर तय हुआ, उससे भी और आगे बढ़कर आकाशवाणी अपना कार्यक्रम करे, लोगों में प्रिय रहे और हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े रहे।
4: प्रोफेसर दिनेश सिंह, पद्मश्री, उपाध्यक्ष, जम्मू एवं कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद और पूर्व कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय।
5: पूर्ण रूप से अपने हृदय से बधाई दे रहा हूँ आकाशवाणी से जुड़े सारे जो हमारे सहयोगी हैं, और मैं चाहता हूँ कि इसको एक त्योहार के रूप में भारत में मनाया जाए, त्योहार के रूप में कि आकाशवाणी ने भारत के लिए क्या किया। मैं आकाशवाणी से बचपन से जुड़ा हूँ और आकाशवाणी से अमृत बरसता है पूरे देश में, विश्व में। मैंने यहाँ से इतनी रचनात्मक युक्तियों को ग्रहण किया है, इसने

भारत की आत्मा को आकाशवाणी ने सींचा है। अब इसके जो एनिवर्सरी आ रही है, इसके 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम सबको इसमें भागीदारी लेनी है और इस उत्सव को पूर्ण रूप से अपने अपनी जगह मनाना है। आकाशवाणी ने भारत का बहुत भला किया है।

0: ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई जानकारियों, नवीन शोध परक बातों एवं विज्ञान जगत की हलचलों के साथ।
1: तो सीखें कुछ नया, सोचें कुछ अलग। आज की विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती को तैयार करने में स्वर सहयोग रहा अल्पी कुमारी और संजय किशोर का। संयोजक थे दिलीप झा और प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार। आकाशवाणी पटना।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: Expanded commercial ties. अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और ज्यादा प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर

अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि यह भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियो शेनियो कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एजान खलमा खानों से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: திஸ் இஸ் ஆகாஷ்வாணி, த நியூஸ் ரெட் பை வல்சா வில்லியம்ஸ். Prime Minister Narendra Modi and U.S. Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-U.S. Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Teerth in New Delhi this afternoon. Mr. Modi said in a social media post that India and the U.S. will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio briefed Mr. Modi on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Rubio shared the U.S. perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. He requested Secretary Rubio to convey his warm greetings to U.S. President Donald Trump and said he looked forward to their continued exchanges. Secretary Rubio is on a four-day visit to India to take part in the Quad Foreign Ministers meeting on the 26th of this month. U.S. Secretary of State Marco Rubio today said India is at the cornerstone of how the United States approaches the Indo-Pacific. Inaugurating the U.S. Embassy Support Annex building in New Delhi, Mr. Rubio said this is evident in the $20 billion that Indian companies invested in the United States and in India signing up for Pax Silica. He said his visit will further reaffirm bilateral ties and build upon them. Secretary Rubio expressed confidence that Indian and U.S. are going to have even more exciting and new announcements to make about strengthening of the relationship between the two countries. Secretary Rubio called Prime Minister Narendra Modi and U.S. President Donald Trump as two very serious leaders who are focused on the long term. Defence Minister Rajnath Singh today inaugurated the artillery shell manufacturing plant established at the Savli Vihir Industrial Estate in Shirdi, Maharashtra. The project, developed by Nibe Limited, will manufacture 155mm artillery shells and has the capacity to produce 5 lakh shells annually. The entire production technology and raw materials used in the project are indigenous. Speaking on the occasion, Defence Minister Rajnath Singh said India was once known as an importer of defence equipment, but in the coming years the country would emerge as a major exporter of defence products. Mr. Singh emphasised that India is preparing itself for future warfare and becoming self-reliant in defence manufacturing through the Make in India initiative.
1: सेल्फ रिलायंट इंडिया और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है. इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को लागू किया गया, पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट लाई गई. हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है. इस पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, भारतीयों के हाथों से बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे.
0: महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस एंड सेवरल अदर डिग्निटरीज अटेंडेड द इवेंट. The centre has asked Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by the 5th of next month, citing that the land was required for strengthening defence infrastructure, an order issued by the Land and Development Office under the Housing and Urban Affairs Ministry yesterday stated that the land is essential to fulfil urgent institutional needs, governance infrastructure and public interest projects. It said the premises, located in a highly sensitive and strategic area of Delhi, is critically required for the strengthening and securing of defence infrastructure and other vital public security purposes. It further stated that possession shall be taken in accordance with law in the event of non-compliance. In wrestling, Indian grapplers Suraj Vashisht and Sagar Singh clinched silver medals in the men's Greco-Roman categories at the Asian Under-23 Wrestling Championships in Da Nang, Vietnam today. And with that, we end this news bulletin.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं शक्ति सिंह। मुख्य समाचार। अमरीकी विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अमरीका के दृष्टिकोण की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। चीन में कोयला खदान विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया। फ्रांस ने इसराइल के सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गुइर के अपने क्षेत्र में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया। और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिका दूतावास की स्पॉट एनएक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए विदेश मंत्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
3: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
2: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
3: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
2: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित

0: सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने के वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: हमने यह समझा सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे। हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निबे ग्रुप की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस परियोजना से अहिल्यानगर जिला रक्षा विनिर्माण केंद्र बन गया है। इस दौरान निबे ग्रुप और इसराइल की एक कंपनी के बीच समुद्री विमानों और ऑप्टिकल उपग्रह प्रौद्योगिकी के विकास के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। चीन के शांसकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्याउन काउंटी की ल्यूशेन कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के कारणों की गहन जाँच की मांग की है। साथ ही कानून के अनुसार दोषियों को सजा दिलाने का भी निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांक्सी प्रांत में खनन हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने लापता सभी लोगों की शीघ्र और सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को दुख की इस घड़ी में शक्ति प्रदान करने की कामना की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। फ्रांस ने इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्वीर के फ्रांस में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बेरोट ने कहा कि ये कदम गाजा जा रहे समुद्र बेड़े पर सवार कार्यकर्ताओं के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार को लेकर बढ़ते आक्रोश को दर्शाता है। श्री बेरोट ने यूरोपीय संघ से बेन ग्वीर पर प्रतिबंध लगाने का भी आग्रह किया है। इसराइल के सुरक्षा मंत्री का पुलिस हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं का मजाक उड़ाता हुआ वीडियो सामने आने के बाद व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा है। कंबोडिया में दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 14 श्रमिकों की मौत हो गई और 93 अन्य घायल हो गए। पहली घटना कंबोडिया के काबोंग छनांग प्रांत में हुई, जहां एक भारी मालवाहक ट्रक श्रमिकों को कारखाने ले जा रहे एक वाहन से टकरा गया। इस दुर्घटना में 9 श्रमिकों की मौत हो गई और 53 अन्य घायल हो गए। दक्षिण पूर्वी प्रांत स्वे रिंग में एक अन्य दुर्घटना में कारखाने के श्रमिकों को ले जा रही एक बस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य लोग घायल हो गए। यूक्रेन के सूमी शहर के बाहरी इलाके में रूस के ड्रोन हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। यह हमला यूक्रेन के लुहांस्क क्षेत्र के रूस नियंत्रित इलाके के स्टारोब्लिक्स में एक कॉलेज के छात्रावास पर हुए ड्रोन हमले के बाद जवाबी सैन्य कार्रवाई में हुआ। स्टारोब्लिक्स में 11 लोग मारे गए थे। इसके अलावा यूक्रेन द्वारा रात भर रूस पर किए गए ड्रोन हमलों में एक रूसी तेल टर्मिनल में आग लग गई, इसमें 2 लोग घायल हो गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सोमवार से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल व्यापार निवेश CEPA वार्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इस दौरे का मुख्य केंद्र बिंदु भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता वार्ताओं को आगे बढ़ाना है। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के भारत दौरे के दौरान टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए गए थे। वार्ताओं का पहला दौर मार्च में वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था और दूसरा दौर 8 मई को संपन्न हुआ। इस दौर के दौरान वार्ताओं का एक और दौर सोमवार से शुक्रवार तक ओटावा में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना की अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता सार्थक पुरस्कार दिया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्य करती हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू

वो हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गोबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री गोबार्ड ने कहा कि उनके पति की गंभीर बीमारी का पता चलने के बाद यह फैसला लिया गया। वे 30 जून से अपने पद से हट जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुश्री गोबार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा है कि प्रशासन को उनकी कमी खलेगी। सुश्री गोबार्ड के बाद राष्ट्रीय खुफिया प्रधान उप निदेशक आरोन लुकास कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम भार वर्ग में सागर सिंह को एतजान खालमा खनोव से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक के अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीकी विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अमरीका के दृष्टिकोण की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा, भारत मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। चीन में कोयला खदान विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया। फ्रांस ने इसराइल के सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गुइर के अपने क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक अपने नाम किए। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि यह भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं

को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांस्की प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जाँच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एक्तुकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग DOSEL ने नई दिल्ली में साकुरा साइंस प्रोग्राम 2026 में भाग लेने वाले छात्रों के एक दल को रवाना किया। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारत के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी स्कूलों के 56 छात्र, जिनमें 24 लड़के और 32 लड़कियां शामिल हैं, 4 पर्यवेक्षकों के साथ इस महीने की 30 तारीख तक जापान यात्रा पर रहेंगे। इस कार्यक्रम में घाना, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिभागियों के साथ हिस्सा ले रहा है। मंत्रालय ने बताया कि ये सभी छात्र सरकार की राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता हैं। भारत अप्रैल 2016 से इस कार्यक्रम में भाग ले रहा है। चीन के शांसकी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। ये विस्फोट क्यूवान काउंटी की लियूशेनयू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार तथा दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी चिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। भारत रूस अंतर सरकारी सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग आयोग के अंतर्गत 5वें उप कार्य समूह भूमि की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क महानिदेशालय ADGPI ने कहा कि यह बैठक भारतीय सेना और रूसी थल सेना के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत